राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजी हुई पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कुशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमरीका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र

0: शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमरीकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादित

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपियाई में शिमाली मकदूनिया के अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसी बंदरगाह के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगझू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपियाई में शिमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्डाना, सिलजानो, वस्का, दाओकोवा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वजीर आजम क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया के पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुँचीं। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका ये दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फ़रोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़रात, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमात जैसे तरजीही शोबों में इकतसादी ताउन को मजीद उसत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहाँ भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज़्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह से रवाना होते वक्त बहरी जहाज़ MV गोल्डन लियो पर हमले की मजम्मत की है।

0: साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: सिक्किम में नामची जिले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची जिले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम से कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल हैं। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने आज रियासत के 5 ज़िलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज़ हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के उहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमन व अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जांच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहते हुए ईरान को जबरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने ये तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मानसून इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर

0: भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शर्बरी बनर्जी का गाया राग अहीर भैरव, कार्यक्रम है स्वर गंगा। आपके साथ तबले पर हैं सुकंतो वाजपेयी, सारंगी पर हैं सईद उर रहमान।

डॉक्टर शर्वरी बनर्जी का गाया राग अहीर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे थे सुकांतो वाजपेयी, सारंगी पर थे सईद उर रहमान। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:14:57 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
1: नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह नई नए विषयों पर नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों के द्वारा उन तक पहुंचाते रहते हैं। हम सब लोगों ने प्रायः अपने स्वास्थ्य समस्या के दौरान या अपने घर में या अपने समाज में ये देखा होगा कि कई बार आजकल बच्चों का जन्म पूर्व निर्धारित समय से पहले हो रहा है। कई बार उनके जो वेट होते हैं, जो वजन होना चाहिए एक नवजात शिशु का, वो एक वैज्ञानिक मापदंड के जो स्वास्थ्य मानक हैं उससे काफी कम रहते हैं। फिर ऐसे बच्चों का भविष्य कैसा हो सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए आगे किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान या एक बात कहें कि स्वास्थ्य अनुसंधान किस तरह के हैं, इन सब बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता। डॉक्टर ज्योति गुप्ता एक एडवांस सेंटर फॉर फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स के निदेशक हैं और ये कई बड़े हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट भी रही हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: अगर हम बच्चे के जन्म के समय की बात करें, क्योंकि मानव का अस्तित्व जो होता है एक मानव के विकास की एक गाथा है कि किस तरह से वो जंगलों से होता हुआ आया और एक उन्नत सभ्यता के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया, इस सब के दौरान बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी रही, पर्यावरण की समस्या भी रही, चुनौतियां भी रही। तो जब एक बच्चे के जन्म की हम बात करते हैं और उसके इलाज की बात करते हैं, जबकि वो गर्भ में रहता है, तो एक जो फेटल मेडिसिन जेनेटिक्स की जो बात करते हैं, ये जेनेटिक्स क्या है और इससे जुड़ी हुई मेडिसिन किस तरह का है?
2: बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और लोगों को इसकी जानकारी होनी भी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब फीटस, आप बोल रहे हो कि प्रीटर्म जो डिलीवरीज होती है या फिर प्रीटर्म डिलीवरीज नहीं होते हुए भी टर्म डिलीवरीज में भी जिन बच्चों का वजन कम होता है, जैसे किसी बच्चे का वजन एक पर्टिकुलर 8वें महीने में 2 किलो होना चाहिए तो उस बच्चे का वजन 1.5 किलो है। तो ये जो है डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसकी कहानी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती है। इसकी कहानी स्टार्ट होती है जब आपकी गर्भ ठहरती है और इसके पहले भी वो कहानी रहती है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन है जो इस फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं कि बच्चे का पूरी प्रेगनेंसी कैसे रहेगी और बच्चे का वजन कितना रहेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, कोई भी मदर जब डिसाइड करती है कि वो प्रेगनेंसी चाहती है तो प्लान प्रेगनेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब आप प्लान प्रेगनेंसी करते हो तो बहुत सारी चीजें क्या होती है, आप प्रेगनेंसी से पहले जान जाते हो कि मदर में ऐसी कोई चीजें तो नहीं है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। और ये हम कैसे जानते हैं, हर मदर्स को ये हम बोलते हैं, जब आपको प्लानिंग करनी है प्रेगनेंसी आप डॉक्टर से मिलिए, और डॉक्टर से मिलके सर्टेन बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हम, जो भी लेडी चाहती है तो उनका हम टेस्ट का इवैल्यूएशन करते हैं। उस टेस्ट में बेसिक हम देखते हैं कि मदर का हीमोग्लोबिन कितना है, मदर के लीवर फंक्शन टेस्ट कितने हैं, किडनी फंक्शन कैसा है, मदर में कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिया क्रिएटिनिन कैसा है, और मदर में कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, मदर में कोई डायबिटीज तो नहीं है, बहुत सारी चीजों का इवैल्यूएशन करते हैं। जब वहां से हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि नहीं, इस मदर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम बोलते हैं मदर को कि जब भी आप प्लान करते हो 1 महीने पहले आप एक दवाई होती है फॉलिक एसिड की, वो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर किसी मदर में हमें पाया जाता है कि उनमें खून बनने,
1: फॉलिक एसिड क्या विटामिन बी है,
2: विटामिन बी है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, तो हर मदर को दिया जाता है प्रीकंसेप्शनली। अब इसका रोल ये है कि ये बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सब चीजों को ये प्रिवेंट करता है। जैसे स्पाइन में आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चों का स्पाइन बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, इसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। या फिर कुछ बच्चों का आपने देखा होगा हार्ट में मल्टीपल मालफॉर्मेशंस होते हैं, तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज

0: होती है। या ब्रेन में आप देखते हो कि ब्रेन जो होता है पीछे की तरफ निकल गया है, किसी के ब्रेन में जो पानी होती है वो बहुत भर जाता है, तो ये सारे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। तो वन ऑफ द कॉज है ये फॉलिक एसिड। कोई भी मदर हमारे पास आती है तो हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट होती है। प्रीवियस हिस्ट्री में जैसे पहले की जो प्रेगनेंसी अगर किसी की रही है तो कैसी रही है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थे, जिससे हमें कुछ हिंट इस प्रेगनेंसी के लिए भी मिलेगा। तो अभी हम करंट अगर प्रेगनेंसी कोई फर्स्ट टाइम प्लान कर रहा है और हमने देखा कि उस मदर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो सर्टेन मेडिसिन है जो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रीकंसेप्शनली, या फिर कंसेप्शन जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं। इकोस्प्रिन नाम की एक टैबलेट है, वो भी हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम मॉनिटर करते हैं बच्चे को।
1: इकोस्प्रिन क्या ये जो
0: ब्लड थिनर है, इसका रीजन ये होता है कि जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे को खाना मदर से मिलता है, सारी न्यूट्रिशन मदर से मिलती है, तो मदर से जो मिलने का जरिया होता है वो होता है प्लेसेंटा, अवल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सारे खून की नली बनी हुई रहती है और जो कनेक्ट करता है मदर को बेबी से। तो जब ये दोनों कनेक्शन होते हैं तो जैसे आप कोई भी पाइप को लोगे तो पाइप में वाटर को फ्लो करने के लिए स्मूथ होनी चाहिए वो अंदर, वहां पे अगर रस्टिंग होगी तो आपका स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से मदर्स और बेबी के बीच में भी आप मानो कि एक चैनल है और वो चैनल स्मूथ होनी चाहिए, और वो चैनल स्मूथ होती है जैसे जिनके अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है तो उनकी वो चैनल स्मूथ नहीं होती है और बच्चे को मदर से जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से मिल नहीं पाता, तो वो चैनल को स्मूथ करने के लिए हमारे पास एक मेडिसिन है, उसको हम इकोस्प्रिन बोलते हैं। और ये इकोस्प्रिन की जो टैबलेट है 16 हफ्ते से पहले ही स्टार्ट करनी पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि तब तक वो स्टैब्लिश हो चुकी होती है 16 हफ्ते के बाद, इसलिए प्रीकंसेप्शन का यहाँ पे ही रोल है कि आपने देख लिया कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगता है कि नहीं इस मदर में ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, या फिर उनके ब्लड गाढ़े होने की, या पहले कोई बच्चे की हार्ट बीट स्टॉप हो गई हो उनके केस में, तो इन सबका रोल है क्योंकि ये वो नली या चैनल को स्मूथ रखती है और बच्चे को फ्लो ठीक से मिलता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम गलती कर जाते हैं तो इस टाइप की प्रेगनेंसी में आगे जाके फिर हम ऐसी बच्चे को डील करते हैं जिनका वजन कम हो सकता है। और इकोस्प्रिन अगर हम स्टार्ट करते हैं 90% के प्रिवेंट करता है बच्चे के लो बर्थ वेट को, मदर में ब्लड प्रेशर होने की समस्या को, या फिर डायबिटीज रिलेटेड कुछ नली में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं उन सब चीजों को 90% प्रिवेंट करता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सपोज दो तरीके की प्रेगनेंसी होती है, एक तो बच्चे का वजन ठीक बढ़ रहा है लेकिन मदर को 7वें महीने में लेबर पेन आ गया और बच्चे की डिलीवरी हो
1: जिसको प्रीमेच्योर
0: डिलीवरी, प्रीटर्म डिलीवरी होती है जो कि नेचुरल मेथड से होती है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको लेबर पेन्स आ गए, कोई लीकिंग हो गई जिसको आप रोक नहीं सकते, वो नेचर ने डिसाइड किया कि इस बेबी की डिलीवरी होगी। उस बच्चे का पॉजिटिव फैक्टर ये होता है कि बच्चे का वजन नॉर्मल होता है बट उनकी डिलीवरी समय से पहले हो गई है, तो उनका आउटकम बेटर होता है कंपेयर टू दी बेबीज जिनका सपोज कि 8वें महीने में 2 किलो वजन होना चाहिए लेकिन क्योंकि बच्चे को खून की कमी के कारण या फिर बच्चे को ठीक से चैनल के थ्रू ब्लड नहीं मिला हो, तो वैसे बच्चों का जो आउटकम होता है कंपेयर टू दी नॉर्मल प्रीटर्म डिलीवरी थोड़ी सी सब ऑप्टिमल होती है।
1: ऐसा कहा जाता है, कई बार अखबारों में भी आता है कि जो बच्चे प्राय 7 महीने में जन्म लेते हैं तो 8 महीना शायद कंप्लीट भी नहीं होता है और अंडर वेट होते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो 250 ग्राम ऐसा होते हैं, फिर उसे एक स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है जो इनक्यूबेटर सिस्टम में उसको रखा जाता है। तो ऐसे बच्चों का जो अंडर वेट का तो आपने कारण बता दिया, प्रीमेच्योर का आपने बताया, इनक्यूबेटर में जो एक प्रोसीजर होता है उसको केयर का वो क्या होता है, उसमें किस तरह से देखभाल करते हैं?
0: एक होती है प्लान डिलीवरी। तो प्लान डिलीवरी में हम क्या करते हैं कि जैसे कि किसी मदर का कोई मेडिकल इश्यू है, बच्चे का वजन कम है और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चे का जो ब्लड फ्लो है वो बच्चे को ठीक से नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह से अगर हम ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम प्रेगनेंसी में हम बच्चे को खो भी सकते हैं, तो हम इसमें प्लान करते हैं और बच्चे को हम स्टेरॉइड देते हैं और बच्चे को हम कुछ और मेडिसिन देते हैं जिससे बच्चे का ब्रेन मैच्योर हो जाता है, लंग मैच्योर हो जाता है, फिर हम डिलीवरी करते हैं प्लान्ड वे में और उसके बाद हम इनक्यूबेटर में रखते हैं, तो उस बच्चे का जो आउटकम होता है वो काफी अच्छा रहता है कंपेयर टू कि आप अनप्लान डिलीवरी करते हो किसी का, किसी को आपने स्टेरॉइड नहीं दिया या ब्रेन मैच्योरिटी के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी और अचानक से आपको इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ी फिर आप इनक्यूबेटर में रखते हो। तो इन दोनों बच्चों में फर्क ये होता है कि सपोज जिसको आपने प्लान्ड वे में किया है तो उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है इनक्यूबेटर में, एक तो नंबर ऑफ डेज उनके कम होते हैं, फिर हम जब डिलीवरी हो जाते हैं फिर हम बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, बच्चे का हार्ट बीट चेक करते हैं, बच्चे का ब्रेन का एक अल्ट्रासाउंड होता है, हार्ट का इको होता है जस्ट टू सी कि मतलब बेबी के ऑर्गन्स तो ठीक से फंक्शन कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उनको स्टेरॉइड नहीं मिला है तो सर्फेक्टेंट नाम की एक मेडिसिन है जो कि दिया जाता है बच्चे को इनक्यूबेटर में, या फिर देखते हैं कि उनकी जो धड़कन है बहुत फास्ट चल रही है या जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट चल रही है तो उनको कभी ऑक्सीजन का सपोर्ट देना पड़ता है, कभी उनको कंटिन्यूअस प्रेशर देना पड़ता है, उसको हम सीपैप बोलते हैं। अगर बच्चा उस पे मेंटेन कर

0: पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो कभी कभी हमें वेंटिलेशन पे भी जाना पड़ सकता है।
1: ऑक्सीजन की
0: तो
1: कमी के कारण
0: बच्चे को ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बच्चा ले नहीं पा रहा है। तो ले नहीं पा रहा है क्योंकि उनके लंग्स में पानी भर जाते हैं, उनके हार्ट में इतना आउटपुट नहीं रहता कि वो बच्चे को पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो कमी नहीं है लेकिन वो बच्चा ले नहीं पा रहा है। अब ले नहीं पा रहा तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लंग कैसा है, उनका एक्सरे होता है बच्चे का। इंक्यूबेटर में रखने के बाद, इंक्यूबेटर का मतलब ये है कि बच्चे को एक वार्म एटमोसफियर दिया जा रहा है जो कि उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए बच्चे के
1: मतलब
0: अकॉर्डिंग
1: बच्चे
0: वो,
1: को एक गर्भ में जिस तरह का
0: हाँ
1: वातावरण
0: क्योंकि
1: चाहिए उसी
0: बहुत
1: तरह का।
0: नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते बच्चे को। इंक्यूबेटर में रखने का मतलब है कि उसको एक टेम्परेचर दिया जा रहा है
1: खास
0: जिसमें वो बच्चा कंफर्टेबल है। अब उसके बाद जो चीजें होती है, फिर हम देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है, बच्चा ओरल फीड ले पा रहा है क्या नहीं ले पा रहा है, और बच्चे का जो होता है रेस्पिरेटरी रेट, जो हम सांस लेते हैं वो कितना चल रहा है। और अगर वो ठीक चल रहा है तो बच्चे को ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन वो कभी इतनी फास्ट चलती है कि आपके लंग्स तक वो पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसे में बच्चे को सपोर्ट देना होता है। तो पहला स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, अगर लगता है कि बच्चा थोड़ा स्टेबल है तो सबसे पहले ऑक्सीजन सपोर्ट देकर देखते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट में अगर हम 3-4 घंटे ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखते हैं कि बच्चे ने ठीक से ऑक्सीजन, जो उनका सेचुरेशन है वो ठीक से मेंटेन हो पा रहा है, तो वो 90% 100% मेंटेन हो पा रहा है तो ठीक है। नहीं हो
1: तो ये तो
0: पाता
1: हो
0: तो
1: गए।
0: फिर हम सीपैप पे चले जाते हैं।
1: ये सारी चीजें जैसे आप मॉनिटर करते हैं तो इसमें क्या मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट किस तरह के यूज करते हैं बच्चे का, जब पता लगता है, जब मान लीजिए प्रीमेच्योर है तब, जैसे कि ये प्रॉब्लम है जांच की, फिटल्स न्यूरोसोनोग्राम किया, ये उसी बच्चे के नवजात शिशु के ही
0: सर नवजात
1: प्रॉब्लम के
0: शिशु
1: लिए?
0: का नहीं होता, ये होता है जब बेबी गर्भ में रहता है तब।
1: अच्छा, ये
0: फीटल
1: सब
0: इको और फीटल न्यूरोसोनोग्राम जो होती है वो होती है गर्भ के दौरान। तो न्योनेटल इको होती है और न्योनेटल ब्रेन सोनोग्राम होता है वो डिलीवरी के बाद होती है। तो जो फीटल इको का जो रोल है वो ये देखना है कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसकी वजह से, अब इसमें भी 2-3 तरीके के होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ थोड़े सिवियर होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो माइल्ड ये होता है कि मतलब बच्चे को इमीडिएट अटेंशन की जरूरत नहीं है, बच्चे को आप डिलीवरी के बाद में थोड़े दिन के बाद आप रिपीट इको करके देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि बच्चे को कितनी सपोर्ट की जरूरत है। वो सीवियर होते हैं उसमें भी हमारा एक साइनोटिक होता है और एसाइनोटिक होता है। साइनोटिक का मतलब ये होता है कि बच्चा ब्लू हो जाता है डिलीवरी होते ही, तो इसका मतलब है, ब्लू होने का मतलब है कि बच्चे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है हार्ट में की, क्योंकि अंदर जब होता है तो बच्चे की जो सर्कुलेशन होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है और वो मदर से कनेक्टेड होती है। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो बच्चे का सर्कुलेशन सिर्फ बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो इसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। तो जब साइनोटिक वाला जो होता है, तो जब बच्चा बाहर निकलता है, मदर से सपोर्ट है नहीं, तो बच्चे अपने पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोबेबली ठीक से सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वैसे केसेस में क्या होता है, आपको इमीडिएट बच्चे को अटेंशन देना होता है, और अटेंशन देने के बाद में फिर जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो आके फिर पीडियाट्रिक इको करते हैं। इको करने के बाद में फिर वो देखते हैं कि इस बच्चे को अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है। अर्जेंट इंटरवेंशन सर्जरी भी हो सकती है, और ये सारी काउंसलिंग फीटल इको का रोल यहीं पे आती है। जब हम फीटल इको करते हैं तो हम देख लेते हैं कि इस बच्चे को किस तरीके की जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली डिलीवरी के बाद में, और फिर मदर को बताया जाता है, देखो आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है डिलीवरी के बाद में, तो आपकी जो डिलीवरी है आपको टर्सरी सेंटर में करवानी चाहिए जहाँ पे कि मल्टी स्पेशलिटी हो और इमीडिएट बच्चे को अटेंशन मिल सके और अर्जेंट इंटरवेंशन के लिए लोग वहाँ पे मौजूद हो। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे केस होते हैं हार्ट में कि जहाँ पे इमीडिएटली, जैसे टेट्रालजी ऑफ एलो है, टीजीए है, बहुत सारी चीजें हैं, कंडीशन है हार्ट की, जिसमें कि बच्चे को होने के बाद ही फिर इमीडिएटली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो होते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं और 4 घंटे के अंदर अंदर सर्जरी करनी पड़ती है।
1: जिस तरह की समस्या होती है उस तरह से उसका इलाज
0: डील किया जाता है,
1: इसीलिए उसको एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए
0: टर्सरी सेंटर
1: करना
0: सर,
1: चाहिए।
0: क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर पे इतनी स्पेशलाइजेशन होती नहीं है।
1: निश्चित रूप से जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई विशेषज्ञता बन रही है हर चीज के लिए, तो आने वाले समय में निश्चित ही जो जन्म के समय की समस्या, अब बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो जेनेटिक्स भी होती है या जो एक एनवायरनमेंट कंसर्न के कारण हो जाती है या डिफिशियंसी विटामिन या न्यूट्रिशन के कारण होती है, उस सब को पहचान करके उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई, आपने न्यूनेटल जेनेटिक्स और उससे जुड़ी जो जन्म नवजात शिशुओं की जो कम वेट पे जन्म होते हैं, समय से पहले हो जाते हैं, उस सब के कारणों के बारे में और सावधानियों के बारे में बताया कि किस तरह से प्लांड डिलीवरी की जाती है अगर इस तरह के केसेस को पूर्वानुमान होता है तो। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स बीन अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا.

يا دور.

0: في لحد الصباح على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الحين المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे

मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने

अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में एसएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम
1: भाई वाह श्रुति जी,
0: निकले।
1: आज तो दिल शायराना शायराना है। बड़ी मतलब आपकी लग रहा है ऐसे कि
0: देखो
1: बिल्कुल
0: क्या है कि रिमझिम फुहार पड़ रही है, तो
1: जी
0: ये तो मौसम ही है ख्वाहिशों के पैदा होने का।
1: जी बिल्कुल
0: तो कोई भी बात करने से पहले श्रोताओं से अपना तारुफ तो करा दें।
1: जी।
0: तो नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पुरी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। मेरे साथ हैं
1: रश्मि कुकरेती और श्रुति जी, आपको आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और FM गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ बिल्कुल, मेरा भी नमस्कार। और आप सभी को बता दें कि आप हमारे साथ हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमसे आप जुड़े हैं 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और डिजिटल परिवार के हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं AIR न्यूज़ लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो जहाँ भी आप हो हम आपके साथ हैं।
1: और श्रुति जी, साथ तो हैं लेकिन साथ में सवाल भी हैं, है ना। जिंदगी
0: हाँ
1: जब चलती है तो सवाल भी साथ होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: मुझे लग रहा है आप कुछ ख्वाहिशों से संबंधित सवाल ही
1: भाई,
0: पूछना चाह
1: आपने
0: रहे
1: ख्वाहिश
0: हैं।
1: की बात शुरू किसने की थी, आप ही ने ना। तो भाई ख्वाहिश से जुड़ा ये सवाल है कि क्या आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है, या कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो आखिरकार पूरी हो गई, यानी कि अपनी इच्छाओं के बारे में हमें बताइए।
0: जी बिल्कुल, ये जज्बात अपनी कहानी हमसे जरूर साझा कीजिए। हमारी ईमेल आईडी हम आपको बताए देते हैं, fmgoldga@gmail.com। एक बार फिर नोट करिए, fmgoldga, GA स्टैंड्स फॉर घर आंगन,
1: और
0: @gmail.com।
1: श्रुति जी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि बारिश हो जाती तो मेरी ख्वाहिश तो पूरी
0: तो
1: हो गई
0: आप
1: है।
0: तो भीगी भीगी लग ही रही
1: अरे
0: हैं, पर मेरी ख्वाहिश है कि बारिश हो तो मैं खूब भीगू, जो मैं नहीं भीग पाई।
1: वाह
0: तो कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा प्यारा सा गीत सुनाते हैं अपने श्रोताओं को और बारिश में भिगाते हैं उनको भी। चिराग फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

0: और देखिए श्रोताओं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमें मेल करते हैं और हम उनको पढ़ते भी हैं। तो रश्मि जी, एक और मेल आई है और ये लिखने वाले हैं उग्रसेन यादव, और ये लिख रहे हैं कि दोनों को सप्रेम नमस्कार। देखिए, ख्वाहिश कभी भी किसी की पूरी तो हो नहीं सकती, पर हाँ, इंसान मात्र के लिए जब भी कोई ख्वाहिश हो, छोटी चाहे बड़ी,
1: जी
0: और बारिश हो जाए तो मान लेना चाहिए कि ख्वाहिश पूरी हो
1: भाई वाह
0: जाएगी। कितना अच्छा कहा है
1: जी जी जी
0: ना। ऐसा हम भी माना करते थे ना, जब कभी बारिश होती थी तो हमें लगता था कि कोई ख्वाहिश पूरी हो
1: जी और भी कुछ कह रहे
0: जाएगी।
1: हैं।
0: और ये कह रहे हैं कि अगर ख्वाहिश का दायरा देखा जाए तो
1: भाई
0: अनंत
1: अनंत है
0: है
1: भाई
0: ख्वाहिशें।
1: श्रुति जी, ये तो हमारे जो भारतीय दर्शन है अब यादव जी ने वो कह दिया
0: हाँ
1: कि भाई
0: बिल्कुल,
1: गीता भी तो यही कहती है कि इच्छा रहित कर्म की ओर गीता
0: बढ़े हम।
1: प्रेरित करती है
0: हाँ
1: कि आप अपने कर्म करते रहिए और इच्छा मत रखिए।
0: हाँ
1: लेकिन हमारी जो बात थी कि ख्वाहिश की, तो बात
0: हाँ
1: ख्वाहिश उन्होंने
0: बिल्कुल
1: बोल भी दी,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मेरे मेरे साथ जुड़ गई हैं सुरभि, वो कह रही हैं मयूर विहार से कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होकर देखना, आज वो पूरी भी हो गई है, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई भी नहीं
0: ये
1: है।
0: तो सच
1: भाई
0: में
1: क्या बात
0: बहुत बहुत ही
1: है
0: प्यारी ख्वाहिश और बहुत ही प्यारी खुशी होती है जबकि तमन्नाएं पूरी होती हैं।
1: जी
0: और देखिए, बारिश हो रही है और इससे हमारी जो धरती माँ है वो भी प्रसन्न हो रही है। धरती माँ की ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो धरती हमारी माँ है और माँ से बड़ा कोई देवता नहीं। जो धरती को पूजे वही सच्चा मानव कहलाता है। और बात है त्रिपुरा के एक बेहद खूबसूरत पर्व की, जिसका नाम है खारुची पूजा। ये पर्व 14 देवी देवताओं की पूजा को समर्पित है, जिसे चतुर्दश देवता भी कहा जाता है, और ये पूरे 7 दिनों तक अगरतला में मनाया जाता है। आपने सुना है इस बारे में रश्मि जी?
1: श्रुति जी, बहुत ये दिलचस्प पर्व है। ये खारची शब्द जो है दो त्रिपुरी शब्दों से मिलकर बना है, खार और ची, जिसका अर्थ होता है पाप को धोना। यानी ये पर्व धरती और मन दोनों की शुद्धि के लिए मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है वो देवताओं को हावड़ा नदी में स्नान कराने से होती है, फिर उन्हें फूलों और सिंदूर से सजाकर मंदिर वापस लाया जाता
0: और
1: है।
0: सबसे खास बात यह है कि ये पर्व जो है सिर्फ आदिवासी समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि त्रिपुरा के हर वर्ग के लोग मिलकर इसे मनाते हैं। आदिवासी हो या गैर आदिवासी, सब एक साथ धरती माता को फल फूल अर्पित करते हैं।

0: ई में मजबूरी नहीं, जरूरत है रश्मि।
1: बिल्कुल श्रुति, और सबसे पहली बात यह है कि घर से निकलने से पहले अपने किसी अपने को लाइव लोकेशन जरूर बताएं, और यात्रा के दौरान भी बीच बीच में उन्हें अपडेट देती रहें। अगर आप कैब में बैठे हैं तो गाड़ी का नंबर भी घर पर लिखवा कर जाएं, और ये छोटी सी आदत आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है।
0: और ये बहुत जरूरी बात है, मुझे लगता है कि जगह का चुनाव भी उतना ही मायने रखता है कि जैसे अगर आप वेटिंग कर रही हैं तो बस स्टॉप हो या स्टेशन, हमेशा रोशनी वाली और भीड़ भाड़ वाली जगह पर इंतजार करना ही चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा श्रुति आपने, और साथ ही भाई आपके फोन की जो बैटरी है वो चार्ज करके रखें। कई बार ऐसा होता है ना कि फोन पूरी में पूरी बैटरी नहीं
0: बिल्कुल
1: होती,
0: बिल्कुल।
1: और जो इमरजेंसी नंबर होते हैं जैसे 112 112 को अपनी स्पीड डायल में रखें। और
0: ये बहुत जरूरी।
1: आजकल कई महिलाएं के जो सुरक्षा ऐप भी आते हैं, जैसे दिल्ली में जो हिम्मत ऐप है दिल्ली
0: हाँ
1: पुलिस
0: दिल्ली
1: का,
0: पुलिस का।
1: वो
0: हाँ
1: जरूर अपने

0: रश्मि जी, कोई मेल आई है क्या
1: जी? बिल्कुल, रोहिणी
0: आप?
1: सेक्टर 8 से आप हैं, पुनीत रावत, प्रवीण कुमार, संजय कुमार, ईशा अरुण, प्रदीप बिमला, मीनाक्षी अमित शर्मा कह रहे हैं कि भाई कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा सबको खुश रखने का प्रयास करें और अपनी ख्वाहिशों को भी थोड़ा सीमित करके रखें।
0: वाह वाह,
1: हमारे श्रोता कितने

0: मिलता है ज्ञान का एक नया कोश वो जगह जानती हो कौन सी है, मैं बताती हूँ
1: क्या
0: तुम्हें।
1: बात है, आजकल तो आप बातें भी कविताओं में कर रही हैं श्रुति।
0: हाँ देखो ना, और हम आज उसकी बात करेंगे जिसे भारत की किताबों की नगरी कहा जाता है, जो है कलकत्ता की कॉलेज स्ट्रीट। और इसके बारे में आपने सुना तो होगा, देखो ये मत बोलना नहीं सुना।
1: बिल्कुल सुना है श्रुति जी, और सच कहूं तो ये जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। इसे बंगाली में बोईपाड़ा कहा जाता है।

0: में आपने सुना तो होगा, देखो ये मत बोलना नहीं सुना।
1: बिल्कुल सुना है श्रुति जी, और सच कहूँ तो ये जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। इसे बंगाली में बोईपाड़ा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किताबों का मोहल्ला, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड किताबों का बाजार भी माना जाता है।
0: ये गणेश चंद्र एवेन्यू से लेकर महात्मा गांधी रोड तक फैली हुई है, और यहाँ सड़क के दोनों ओर सैकड़ों छोटी बड़ी दुकानें और फुटपाथ पर बिछे किताबों के ढेर नजर आते हैं। और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो यहाँ न मिले। पुरानी, दुर्लभ और जो अब छपना बंद हो चुकी हैं, वो भी ये किताबें यहाँ पे ढूंढने से मिल जाती हैं।
1: वाकई श्रुति जी, सच में किताब प्रेमियों के लिए तो ये स्वर्ग जैसा लगता होगा। और मुझे लगता है जो अगर मेरा मन होता ना, तो मैं सारी किताबें समेट कर अपने पास रख लेती। और यहाँ तो प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय भी पास में ही है, और मशहूर इंडियन कॉफी हाउस भी है यहाँ पर, जहाँ पर लेखक, कवि और छात्र बैठ कर घंटों साहित्य और राजनीति पर चर्चा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है श्रुति जी की वहाँ की चाय और कॉफी के साथ नहीं महान विचार भी जन्मे हैं।
0: बिल्कुल, सच में ये जगह सिर्फ किताबें बेचने का बाजार नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति और सोच का केंद्र है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 100 साल पहले थी। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी कलकत्ता जाएं तो इस किताबों की नगरी में जरूर घूम कर आएं।

0: चाहिए, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को समय समय पर देखते रहना चाहिए, जांचते रहना चाहिए कि कहीं उसमें कोई गलती ना रह जाए।
1: और भाई एक साथ कई जगह लोन के लिए आवेदन करने से भी बचे। बिल्कुल सही कहा है ना श्रुति जी?
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: भाई
0: बिल्कुल।
1: बार बार लोन के आवेदन करने पर भी स्कोर पर असर पड़ता है। धैर्य रखें, अनुशासन में रहें, तो अच्छे क्रेडिट स्कोर भी ये सबसे बड़ी पूंजी है इसकी।
0: और देखो, धैर्य तो हमारे श्रोता रख ही रहे हैं क्योंकि वो गीत सुनना चाहते हैं और हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं, है ना
1: जी?
0: तो सुनाते हैं अपने श्रोताओं को ये गीत।

0: क्योंकि हमारे जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं एक छोटी सी मेल पढ़ देती हूँ। उमेश कुमार खयाला से कह रहे हैं कि जो टाइम पर मिल जाए उसमें ही सब्र करना चाहिए, ज्यादा लेने की भाग दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। भाई वाह क्या बात है।
1: और देखो बात तो उन्होंने सही कही है, लेकिन एक बात माननी होगी रश्मि कि आज हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं की ख्वाहिशों को जगा दिया है।
0: जी बिल्कुल।
1: उन्होंने याद भी किया कि अपनी कौन सी ख्वाहिशें उनकी रह गई थी, पर अब समय हमसे कह रहा है कि हम अपने श्रोताओं से विदा लें। तो अपनी अच्छी पुरानी यादों को हमारे साथ जोड़े रखिए, हमें ईमेल जरूर करिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
0: और विदा लेने का समय तो आ गया है, पर भाई श्रुति विदा लेना कोई अंत नहीं होता बल्कि अगली मुलाकात का वादा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कल मिलेंगे फिर एक नई बात के साथ, एक नई कहानी के साथ, और वही अपनापन लिए हुए। तब तक आप अपनों का और अपना ख्याल रखिए।
1: बिल्कुल। और मुझे श्रुतिपुरी को
0: और रश्मि कुकरेती को
1: घर आंगन से दीजिए
0: इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय

0: ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ मैं, आप सभी के होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है एक ही फिल्म। एक ही फिल्म कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं उन कुछ पुरानी फिल्मों की मीठी सुहानी यादों से, या कहें कि वो फिल्में हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए जो एक वक्त हमारे दिल में, हमारे दिल के किसी कोने में अपनी एक बहुत ही खास जगह रखती थी। और आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं उस दौर की वो फिल्म, जिस दौर में काले और सफ़ेद रंगों के बीच जज्बात ढलते हुए इतने रंगीन हुआ करते थे कि दिल अपने आप थम सा जाता था। और उसी साल एक ऐसी फिल्म आई, वो दौर था सन 1960 का, जिसके गानों ने हर गली, हर मोहल्ले, हर रेडियो पर अपना कब्जा जमा लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1960 में आई एक क्लासिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल अपना और प्रीत पर आई। तो आज के हमारे इस सफ़र में जो हमारी बातों का जो सिलसिला है वो चलेगा फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई को लेकर, जो कि बनी है हिमालया फिल्म्स के बैनर के तरह, और इसको निर्देशित किया किशोर साहू ने। तो दोस्तों, बातें करेंगे, बातों का सिलसिला चलेगा इसी फिल्म को लेकर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में लता जी की आवाज़ में यह खूबसूरत सा गीत इसी।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ दिल अपना और प्रीत पर आई हिमालय फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म किशोर साहू के द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक लव ट्रायंगल थी, लेकिन इसे बनाया बहुत ही संजीदगी के साथ था। यानी कि लव ट्रायंगल था लेकिन बहुत ही शांत और बहुत ही संजीदा फिल्म। एक तरफ इस फिल्म में थे दयालु और अपने फर्ज के पक्के डॉक्टर सुशील, यानी कि हमारे डैशिंग राजकुमार साहब, और दूसरी तरफ थी एक सीधी साधी सी नर्स करुणा, जिसकी आंखों में भी करुणा थी, दर्द और मोहब्बत झलकता था, यानी कि हमारी खूबसूरत और टैलेंटेड मीना कुमारी जी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब डॉक्टर सुशील की शादी उनका परिवार एक अमीर और घमंडी लड़की रीता यानी कि नादिरा से करा देता है। अब एक तरफ दिल का रिश्ता और दूसरी तरफ फर्ज और समाज की बंदिशें। कहते हैं ना, जब दिल किसी और का हो और प्रीत किसी पराए से निभानी पड़े तो जिंदगी बड़ी ही मुश्किल हो जाती है, कश्मकश में फंस जाती है। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और सदाबहार गीत, जो आज भी जब बजता है ना तो हर किसी के दिल के तार बज उठते हैं। तो लीजिए सुनते हैं लता जी की मखमली सी आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, वेलकम बैक। और क्या खूबसूरत गाना है, वाह वाह। वैसे अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात करें तो शंकर जय किशन की जोड़ी ने जो जादू बिखेरा है ना, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। और पता है आपको, जानकर ये हैरानी होगी कि 1961 का जो फिल्म फेयर अवार्ड था, उस अवार्ड फंक्शन में इस फिल्म के म्यूजिक ने इतिहास को रचा। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतिहास कैसे रचा, तो आपको बता दें कि उसी साल के आसिफ की फिल्म मुगले आजम को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिलेगा, ये हर कोई मान रहा था। लेकिन जब लिफाफा खुला तो वो निकला शंकर जय किशन के नाम का, और हर कोई हैरान रह गया कि भाई मुगले आजम जैसी बड़ी फिल्म को पीछे छोड़कर शंकर जय किशन के दिल अपना और प्रीत पराई के शानदार गीत की वजह से उन्हें मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। अब एक क्यों नहीं मिलता। इस फिल्म में लता जी का एक और खूबसूरत सा, चुलबुला सा, प्यारा सा गाना है जो कि अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं।

उनके किरदार हैं, उन किरदारों में वो गहराई हो और उन किरदार को निभाने वाले जो कलाकार हैं उनमें भी वो गहराई होनी चाहिए। और यही वजह थी कि जब इन्होंने लिखा इस फिल्म की एक्ट्रेस के लिए किरदार करुणा के लिए, तो वो चाहते थे कि इस किरदार के लिए एक ऐसी अभिनेत्री हो जो कि एकदम सीधे सादे मिजाज की हो और उनके किरदार में दिखे कि वो किस तरह से अंदर ही अंदर घुट रही है। और जो भी सब लिखा गया था, उन्होंने जो भी कहानी में लिखा था, वो चाहते थे कि वो उस पर एकदम परफेक्ट उतरे। और यही वजह थी जब किशोर साहू जी ने संपर्क किया मीना कुमारी जी से, तो उस वक्त वो अपनी बहुत सी फिल्मों की वजह से काफ़ी अपनी गंभीर अभिनेत्री की जो छवि थी वो बना चुकी थी। और उनकी ये बात तो हर कोई मानता है कि जो उनकी आंखें हैं वो बिना बोले ही आंखों से दर्द साफ झलका देती हैं। और मीना कुमारी जी ने भी इस रोल को एकदम से हाँ किया, और वाकई में जब उन्होंने इस किरदार को निभाया तो करुणा के किरदार को उन्होंने अमर बना दिया। राजकुमार साहब को भी इसी तरह से उन्होंने साइन किया, और किस तरह से किया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत आशा जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। जब इस फिल्म की कास्ट को फाइनलाइज किया जा रहा था, तो जो इस फिल्म के निर्देशक हैं किशोर साहू जी, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और संजीदा फिल्मकारों में से एक माने जाते थे, और वो चाहते थे कि

तो बताओ कोई समझाओ दिल इसको दूं या उसको दूं। उई, इतनी बड़ी महफिल और एक दिल

अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा ने, श्री सुधाकर, राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित, प्रथमेश सरवत, प्रणाली सानवी, कल्पना देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। चंडीगढ़ से सतीश अनीजा, विमल अनीजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगला संदेश हम तक पहुंचाया और पहुंचाने वाले हैं वीरगाम गुजरात से अजित भावसर, और इनके साथ हैं प्रमीला भावसर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: खबर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चोणवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए नीट प्रीख्या पेपर लीक में शामिल लोगों विरुद्ध सख्त कार्रवाई यकीनी बनाने और देश के नौजवानों के हितों की राखी करने लिए सरकार की वचनबद्धता दोहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरेक मुक्त व्यापार समझौते में भारतीय किसानों के हितों को सब तो वध तरजीह दी गई है। नीट पेपर लीक मामले समेत वख-वख मुद्दों से विरोधी धिर के हंगामे कारण संसद के दोहां सदनों की कार्रवाई दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माण अधीन सुरंग में फसे लोगों को सुरक्षित कढ़ने लिए बचाव कार्य जारी ने। हुण तक 9 लाशां कढ़ियां गई ने। पी वी सिंधु अज तो शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट में भारत की अगवाई करेंगे। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविख दीआं प्रीख्यावां विच पेपर लीक नूं रोकण लई सारे हिस्सेदारां वल्लों तालमेल वाले यत्नां दा सद्दा दित्ता है। श्री मोदी ने हाल ही में हुए नीट प्रीख्या पेपर लीक में शामिल लोगों विरुद्ध सख्त कार्रवाई यकीनी बनाने और देश के नौजवानों के हितों की राखी करने लिए सरकार की वचनबद्धता दोहराया है। प्रधानमंत्री ने यह गल अज संसद भवन कंपलैक्स में राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए संसदीय पार्टी की मीटिंग जिसनों मंगल मिलन भी कहा जाता संबोधन करदे कही। मीडिया नाल गलबात करदे संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नीट पेपर लीक बारे जानकारी मिलने के तुरंत बाद सरकार ने कार्रवाई की है। श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में शामिल सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हों में 13 मुलजम इस समय जेल में बंद ने। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दोषी लोगों को सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए है। श्री रिजिजू ने कहा कि मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में अजिहे पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कदम चुके गए ने।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
2: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत वालों कई देशों नाल कीते गए मुक्त व्यापार समझौते बारे भी गल की थी। मीटिंग दौरान श्री मोदी ने कहा कि हरेक मुक्त व्यापार समझौते में भारतीय किसानों के हितों को सब तो वध तरजीह दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अजिहे सारे समझौते किसानों की भलाई और राष्ट्रीय हित को सब तो अगे रख के किए गए ने।
3: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
2: संसद के चल रहे मानसून समागम का हवाला देंदे प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए बिलों को पास कराने में एक रचनात्मक ते सकारात्मक भूमिका निभाएगा। श्री रिजिजू ने विरोधी पार्टी को संसद में सहयोग करने की अपील करदे कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर संसद के सारे मैंबर देश की सेवा कर इस भविख की राखी कर इस नौजवानों की भलाई लिए काम करने चुने गए ने। लोक सभा विच विरोधी धिर के नेता राहुल गांधी ने अज स्पीकर ओम बिरला नाल मुलाकात की ते कहा कि विरोधी धिर विद्यार्थियों के मुद्दे ते चर्चा चाहती है।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के इफ्शा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रुकावट आ गई। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 9 अफराद हलाक हो गए और कई लापता हैं। बचाव का काम जारी है। वजीर आजम ने सिक्किम के वजीर आला को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है और भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी LG को तलब किया है। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में GMC बालयोगी ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान NDA की इत्तेहादी पार्टियों ने वजीर आजम को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर मुबारकबाद की तहरीक मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वजीर आजम ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तहानात के सवालनामे इफ्शा होने से रोकने के लिए सभी मुतल्लिका फरीकों की मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा इफ्शा होने में मुलव्वस लोगों के खिलाफ और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया। वजीर आजम ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलव्वस हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुल्ज़िमीन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: जनाब रिजिजू ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने आजाद तजारती समझौतों के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: NDA के अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत मरकजी सरकार मुल्क में इम्तिहानात मुनाकिद कराए जाने में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि NDA पार्लियामानी पार्टी

0: की मीटिंग यानी मंगल मिलन के दौरान वजीर आजम मोदी ने मुकाबला जाति इम्तिहानात में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद का इरादा किया।
1: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: बीजेपी के राज्यसभा के MP अशोक मित्तल ने, जिन्होंने पहली मर्तबा NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में शिरकत की, कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत तलबा के साथ है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट पेपर लीक समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आरई की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने अपोजिशन की आराई के दौरान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों के इंतखाबात से मुतालिक तहरीक पर बहस शुरू की। प्रिजाइडिंग अफसर सिंधा रे ने सभी अरकान से जोर देकर कहा कि वो अपने अपने नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशोसलूबी से जारी रहने दें। उन्होंने कहा कि वक्फा सिफर अरकान के लिए है और पूरा मुल्क ऐवान की कार्रवाई देख रहा है। उनकी इस अपील के बावजूद अपोजिशन अरकान हाथों में तख्तियां लिए ऐवान के वस्त में आ गए और नीट और तलबा के मुजाहिरों के बारे में नारे लगाने लगे। इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू करना चाहा, लेकिन अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन से जोर देकर कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई में तआवुन दें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने में आए। जब राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए पहली बार मुलतवी होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपने अपने नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशोसलूबी से जारी रहने दें, लेकिन अपोजिशन ने इस अपील को नज़रअंदाज कर दिया। शोरगुल के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग के मकाम पर NHPC तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के जेर तामीर टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के गरज से तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। नामची जिले के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि बचाव टीमों ने अब तक 9 लाशें निकाली हैं। तकरीबन 25 अफराद के टनल के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। बावर किया जाता है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब टनल को नुकसान पहुंचा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नामची जिले में जेर तामीर टनल में हादसे के बाद सूरत हाल और बचाव कार्रवाइयों के बारे में मालूमात हासिल करने की गरज से आज सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब तमांग ने कहा कि वजीर आजम ने मरकजी सरकार की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सिक्किम के वजीर आला ने वजीर आजम की मदद, तशवीश और रियासत के साथ यकजहती के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। जनाब तमांग ने कहा कि NDRF, SDRF, SSDMA, जिला इंतजामिया, मकामी पुलिस, रंगपो PHC की तिब्बी टीमें और मकामी बिरादरी मुतासर लोगों को हर मुमकिन मदद पहुँचाने की गरज से करीबी इश्तराक के साथ मुसलसल काम कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के नामची में एक जेर तामीर टनल के मनदे

0: shbcaravali@gmail.com within 3 weeks. Martyrdom Day is being observed by the Congress and the two factions of the Trinamool Congress in West Bengal today. On the 21st of July 1993, 13 workers of the Youth Congress were killed by the police firing in Kolkata. In China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10, 21-14 defeat to Malaysia's Leong Jun Hao in Changzhou today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namche district. Rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों

0: हर तरीके अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है और भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
2: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
3: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध

और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय एम

से भूलूं कि आपको बताना है कि आपके साथ आज कौन है। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का स्वागत करती हूं आप ही के इस पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार।

इस सितारे को चुनकर लेकर आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी की, जिन्होंने कई यादगार गाने लिखे। हिंदी सिनेमा के जिस सितारे की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम हमने आपको बता ही दिया, जिन्होंने ना जाने कितने अनगिनत गानों को अपनी कलम से लिखा और उन तारानों को अमर कर दिया। आनंद बख्शी एक ऐसे गीतकार रहे जिन्होंने करीब 4000 से ज्यादा गाने लिखे और वो गाने हर तरफ छा गए। आनंद बख्शी का जन्म

वो सेना में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर वो मुंबई आ गए। हालांकि मुंबई आकर उनकी जो मुश्किलें थीं वो बहुत आसान नहीं थीं, बल्कि मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गईं। कहा जाता है कि वो स्टेशन पर रुका करते थे, उन्होंने कई प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटे, जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए। इसके बाद वो दिल्ली आए और यहाँ उन्होंने आकाशवाणी में ऑडिशन दिया, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए, फेल हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो कैसे आकाशवाणी के जरिए उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें फौज की नौकरी में वापस चले जाना चाहिए। अब उस दौर में फौज में वापस जाने का विकल्प होता था। जो जबलपुर वो गए और उन्होंने फौज की नौकरी रिज्वाइन कर ली। इसके बाद 1953 में उनका प्रमोशन हुआ और फिर उन्हें 1956 में मुंबई दोबारा वापस भेज दिया गया।

0: रे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

सात साल का इंतजार करना पड़ा। साल था 1965 जब फिल्म आई जब जब फूल खिले, परदेसियों से ना अखियां मिलाना ये गाना आया, और उसके बाद हिमालय की गोद में जो गाना इस फिल्म के आए, रातों रात उन्हें स्टार गीतकार बना दिया, और इसके बाद तो मानो उनकी पूछ खूब होने लगी।

इसके बाद आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सुपरस्टार राजेश खन्ना की ऐसी तिकड़ी बनी जिसने बॉलीवुड पर 15 साल तक राज किया। आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, दो रास्ते जैसी फिल्मों ने उन्हें सफलता के शिखर पर बिठा दिया, जहां तक कि उनकी आडी बर्मन के साथ जुगलबंदी भी खूब हिट रही। दम मारो दम का गाना, हरे रामा हरे कृष्णा से ये गीत और

चूल्हे के जो गाने थे उन्होंने साबित कर दिया कि आनंद बख्शी को हिट गानों की परख बहुत अच्छे से है और वो युवाओं की नब्ज पकड़ना जानते हैं। आनंद बख्शी ने ना जाने कितने हिट गाने पहले ही सिनेमा को दे दिए थे। 80 और 90 के दशक में तो मानो हिट गानों की गारंटी आनंद बख्शी बन चुके थे। और इसी बीच साल 1993 में फिल्म आई खलनायक। इस गाने का जो इस फिल्म का जो गाना था चोली चोली के पीछे

50 का दशक मुख्य रूप से ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का दौर था। निर्देशकों ने लाइट शेडो यानी कि रोशनी और जो छाया है और कैमरा वर्क का ऐसा कलात्मक इस्तेमाल किया कि आज भी वो दृश्य देखने लायक लगते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो दिग्गज अभिनेता जो थे वो

जी हाँ दोस्तों, अगर 60 का दशक हम बात करें तो रंग ताजगी और मस्ती का दौर था, तो वहीं 50 का दशक भारतीय सिनेमा की आत्मा, उसकी कलात्मक गहराई और सामाजिक चेतना का सबसे सुनहरा दौर था। उम्मीद करते हैं कि जो गीत आप सुन रहे हैं आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। हमारे साथ खजाना गेट अमृतसर से प्रेम सागर और शुभ लता जी जुड़े हुए हैं।

0: प्यार करता जा।
1: तो दोस्तों ये था मैटिनी मेलोडीज का एक सुनहरा सफर। अगले सफर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रोग्राम उर्दू मजलिस।

0: एक अहम कदम उठाया गया। ट्रांसपोर्ट के शोबे में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी जदीद ट्रेनों का आगाज़, रेलवे स्टेशनों की जदीदकारी, रेलवे नेटवर्क की तौसी और बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों में इजाफा काबिले ज़िक्र इकदाम हैं। इसी तरह उड़ान स्कीम के ज़रिए छोटे शहरों को फ़िज़ाई खिदमात से जोड़ा जा रहा है, ताकि आम शहरी भी आसान और कम खर्च फ़िज़ाई सफ़र से फ़ायदा उठा सकें। डिजिटल मईशत के फ़रोग में UPI और डिजिटल अदायगी के निज़ाम ने अहम किरदार अदा किया है। किसी भी हुकूमत की कामयाबी का हकीकी मेयार सिर्फ़ तरक्याती मंसूबे नहीं, बल्कि आवाम की ज़िंदगी में आने वाली मुथबत तब्दीली होती है। इसी सोच के तहत विकसित भारत 2047 का विज़न पेश किया गया है, जिसका मकसद आज़ादी के 100 बरस मुकम्मल होने तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील, खुशहाल और जदीद मुल्क बनाना है। इस विज़न में मेयारी तालीम, जदीद सेहत की सहूलियात, माहौलियात का तहफ़ ख़वातीन और नौजवानों की शमूलियत, इख्तिरा, तहकीक और पायदार तरक्की को खुसूसी अहमियत दी गई है। माहौलियाती तहफ़ के लिए भी मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनमें शजरकारी, साफ तवानाई, शमसी तवानाई, आबी वसाइल का तहफ़ और पायदार तरक्की के मंसूबे शामिल हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि, गति शक्ति, उड़ान, वंदे भारत, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे मंसूबे मुल्क की तरक्की के सफ़र की नुमाया मिसालें हैं। ये तरक्याती मंसूबे उसी वक्त अपनी हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं जब हुकूमत के साथ आवाम भी जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करें। हुकूमत और आवाम की मुश्तरका कोशिशें ही एक मजबूत, तरक्की याफ्ता, खुद कफील और खुशहाल हिंदुस्तान की ज़मानत हैं।
1: अभी आप तरक्याती सरगर्मियों पर मबनी प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का सुन रहे थे। पेश कर रहे थे जनाब नौशाद आलम। समीन, हौसला अफजाई किसी इंसान के अंदर आगे बढ़ने और दिक्कतों और मुश्किलात से मुकाबला करने की क़ुव्वत अता करती है। जब ज़िंदगी में मायूसी और नाउम्मीदी मालूम होने लगे तो ऐसे मौक़ों पर हौसला अफजाई तकसीर का काम करती है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम हरफे ताबिंदा। उन्वान है संत कबीर दास के दोहे की रोशनी। पेश कर रहे हैं जनाब मोहम्मद मुश्ताक।
2: संत कबीर दास जी थे तो एक इंसान ही, और उन्होंने तजर्बात को दोहों की शक्ल में बयान किया है, लेकिन उनके तजर्बात और मुशाहदात इतने अलौकिक और इतने आला हकाइक के मजहर हैं कि वो सारे जमान व मकान में समोए हुए महसूस होते हैं। उनमें से बहुत से दोहे तो ज़िंदगी की चलती फिरती तस्वीर हैं। ऐसा ही एक दोहा यह है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेंठ, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। यानी जिस तरह मोती की तलाश करने वालों को जो कुछ मिलता है वो गहरे पानी के अंदर ही मिलता है, और जो आदमी पानी की गहराई से डर जाए तो वो मोती हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह जीवन का रस और ज़िंदगी की हकीकतें भी सिर्फ उसको मिलती हैं जो अंजाम की परवाह किए बगैर तन मन धन से उसमें लग जाए। जो अंजाम की फ़िक्र में लगकर पूरी कोशिश नहीं करता, उसको ख्वाहिशात और तमन्नाओं के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। हकीकत भी यही है, जो लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं वो जब तक उस पर अपना तन मन वार नहीं देते उस वक्त तक उनको कुछ नहीं मिलता, और अगर कुछ मिलता है तो वो हकीकत नहीं होती बल्कि सिर्फ हकीकत की एक झलक होती है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इंसान जो कुछ करे तन मन लगा कर करे, और इस तरह करे जैसे गोताखोर पानी के अंदर मोती तलाश करता है। अगर वो एक लम्हे के लिए भी अपना ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ भटका दे तो उसको मोती तो नहीं मिलेंगे, ऊपर से उसके डूब जाने का ख़तरा भी होगा। ज़िंदगी की हकीकत जानने और खुदा की तलाश करने वालों का भी यही हाल होता है। अगर वो अपना मकसद भूल जाए तो ज़िंदगी तो अपना सफ़र जारी रखेगी, लेकिन वो अपना सफ़र गुम कर देगा اور راستے

0: से भटक जाएगा। दूसरी हकीकत इस दोहे में यह बयान की गई है कि जिंदगी की हकीकत और सबसे बड़ी सदाकत को जानने के लिए हौसले और हिम्मत से काम करने की ज़रूरत है। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं और नामुसाइद हालात पेश आते हैं। अज़्म व हौसला के लोग इन मुश्किलात से डरते नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करते हैं और हिम्मत और हौसला से काम लेते हैं। वही लोग कारजार हयात में कामयाब होते हैं, और जो ज़िंदगी की मुश्किलात से डर कर मैदान छोड़ देते हैं, उनके हिस्से में नाकामी के सिवा कुछ नहीं आता। कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो हिम्मत दिखाते हैं और बहादुरी के साथ मर्दाना वार मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। जिस तरह मोती उसी को मिलता है जो समुद्र की गहराई में जाकर उसे तलाश करे, वो लोग जो डर कर किनारे बैठ जाएं, उनके हिस्से में मोती नहीं आते, सिर्फ मोती की हसरत और नाकामी ही आती है। लगातार जद्दोजहद करना ही कामयाबी की कुंजी है। आम तौर पर कामयाब और बड़े लोगों की चार खूबियां बताई जाती हैं। एक खूबी ये होती है कि उनकी नज़र में मकसद पूरी तरह वाज़ह होता है, यानी उनको ये मालूम होता है कि उनको क्या हासिल करना है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की निगाह सिर्फ चिड़िया की गर्दन पर थी, इसी तरह उनकी नज़र भी सिर्फ अपने मकसद पर होती है। मकसद के अलावा हर चीज़ उनकी निगाहों से ओझल हो जाती है। उनकी दूसरी खूबी यह होती है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए उनके सीने में एक आग लगी होती है, और वो आग उनको चैन नहीं लेने देती। हमारे मुल्क के अजीम साइंसदान और सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ऐसा हौसला कामयाबी का ज़ामिन होता है। तीसरी चीज़ मकसद के हुसूल की प्लानिंग होती है, क्योंकि प्लानिंग के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। समुद्र से मोती चाहिए तो उस समुंदर में उतरना पड़ेगा जिसमें मोती हों। गांव के कुएं में गोता लगाने से मोती नहीं मिलेंगे, यही प्लानिंग है। और चौथी खूबी सत्संग होती है। अच्छे और इस राह के माहिर लोगों से दिली ताल्लुक इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है, और जो अपनी ज़िंदगी के रथ में इन चार घोड़ों को शामिल न करे, उसकी ज़िंदगी कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं होगी। और यही बात संत कबीरदास जी ने इस दोहे में समझाने की कोशिश की है।
1: अभी आप प्रोग्राम हरफे ताबिंदा सुन रहे थे। उन्वान था संत कबीरदास के दोहे की रोशनी। पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद मुश्ताक। समीन कव्वाली सूफियाना मौसीकी की एक ख़ास शक्ल को कहा जाता है। ये महज एक गायकी नहीं है,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 4 बजने को हैं, आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: खेल खिलाड़ी,
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार श्रोताओं।
3: नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण टिकिया।
2: और मेरा नाम अभिनव कुमार झा।
3: और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी।
2: हर दौर में कुछ लोग बदलाव का विरोध करते हैं क्योंकि नया हमेशा अनजान लगता है, लेकिन समय हमें सिखाता है कि बदलाव सिर्फ जरूरी नहीं, कई बार वही आगे बढ़ने का रास्ता बनता है। आज बास्केटबॉल का 3x3 और हॉकी का हॉकी 5 जैसे नए प्रारूप इसी बदलाव की मिसाल हैं।
3: खेल वही है लेकिन जुनून नया है, क्योंकि हर दौर में क्रांति जरूरी है, बदलाव जरूरी है। कहते हैं चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। हमारे इतिहास में भी बदलाव कभी चुपचाप नहीं आया। जब वक्त ने करवट मांगी तो कुछ लोग ने जोखिम उठाया और बदलाव लेके आया। चाहे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि बदलाव लाने की मुहिम उठाई गई। वैसे ही खेल की दुनिया में लगातार नए स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। चेस जो कि एक लंबा खेल हुआ करता था, आज की डेट में रैपिड और ब्लिट्स फॉर्मेट में खेला जाता है। क्रिकेट जो 5 दिन का खेल हुआ करता था, आजकल छोटे छोटे फॉर्मेट में यानी 3 घंटे के फॉर्मेट में T20 के अंदाज में खेला जाता है। इसी तरह कुछ नए फॉर्मेट्स देखने को मिल रहे हैं लगातार हर खेल में, उन पर आज चर्चा करेंगे। साथ के साथ क्या कुछ चल रहा है भारतीय खेल इकोसिस्टम में, उस पर नजर डालेंगे। तो सुनते रहिए हमारे साथ खेल खिलाड़ी।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का केंद्र रहने वाले हैं हॉकी और साथ के साथ बास्केटबॉल और टेबल टेनिस से जुड़ी खबरों पर नजर डालने वाले हैं।
1: वहीं हम बात करेंगे परसों से शुरू होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहां पे हम उठाएंगे आज बास्केटबॉल की बातें।
0: साथ के साथ पैरा एथलीट्स किस तरह की तैयारी कर रहे हैं इस खेलों के लिए, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, उस पर भी हम नजर डालने वाले हैं। साथ के साथ चेस की दुनिया में आपको लेके जाएंगे, जहां पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। राउंड 5 के बाद कैसा रहा है भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन, गुकेश दोमराजू और अर्जुन इरिगासी पे खास नजर हमारी होने वाली है।
1: और वहीं आपको लेके चलेंगे कनाडा, जहां बात हम करेंगे स्क्वैश, जूनियर स्क्वैश वर्ल्ड कप की।
0: टेबल टेनिस पर भी बातचीत करेंगे, जहां पर फ्रेंचाइज आधारित टूर्नामेंट यूटीटी यानी अल्टीमेट टेबल टेनिस में लगातार भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। तो बने रहिए अगले आधे घंटे दर्पण और अभिनव के साथ। आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी।

0: तो शुरुआत करेंगे हम हॉकी से। हॉकी एक ऐसा खेल जिसमें भारत काफी सक्सेसफुल रहा है, काफी सफल रहा है। इतिहास में आप जानते ही हैं कि भारत ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन विश्व कप में शायद उस तरह का प्रदर्शन हाल ही के सालों में नहीं रहा है। याद दिला दें आपको कि पिछली बार भारत ने विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी 1975 में, और 50 वर्ष उसके पूरे हुए पिछले साल जब एक भव्य कार्यक्रम हॉकी इंडिया ने भी किया उस टीम को सम्मानित करने के लिए। और अब उसी उम्मीद के साथ नीदरलैंड्स और बेल्जियम का रुख करने वाली है भारत की पुरुष हॉकी टीम, जिसका चयन हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। क्या कुछ उम्मीदें हैं, कौन कौन से खिलाड़ी शिरकत करने वाले हैं, इस सब पर एक संपूर्ण रिपोर्ट है, आइए सुनते हैं।
1: भारत की टीम है बाईं तरफ जहां पे पहुंच गया अब्बास, अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपनी टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है।
0: 1975 की विश्व विजेता बनने की इन सुनहरी यादों को अपने

0: में लिए और उस कारनामे को दोहराने की महत्वाकांक्षा लिए 14 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाले विश्व कप में भारतीय टीम पूरे जोश के साथ उतरेगी। इस विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम की घोषणा आज हो गई। अनुभव और युवा शक्ति के अच्छे मिश्रण वाली इस टीम का नेतृत्व करेंगे हरमनप्रीत सिंह और डिफेंस की पंक्ति में उनका साथ निभाएंगे जर्मनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगराज, संजय, सुमित और यशदीप सिवाल।
1: और मिडफील्ड की जिम्मेदारी राजेंद्र, आदित्य, हार्दिक, नीलकांता, विवेक सागर प्रसाद और पिछले ही महीने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुकाबला खेलने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले मनप्रीत सिंह के कंधों पे होगी।
0: गोल दागने के लिए बतौर फॉरवर्ड दिलप्रीत सिंह लाखरा, शिलानंद लाखरा, सुखजीत सिंह, अभिषेक और मनदीप सिंह तैयार हैं।
1: तो वहीं गोल बचाने के लिए गोलकीपर मोहित और सूरज कारकेरा का चयन हुआ है। कृष्ण पाठक को टीम में जगह नहीं मिली है। गोलकीपर्स पर खास नजर इसलिए भी होगी क्योंकि विश्व स्तरीय मंच पर यह भारत का पहला बड़ा टूर्नामेंट है।
0: हालांकि 2004 में भारत का ओलंपिक्स में प्रतिनिधित्व करने वाले हरपाल सिंह कहते हैं कि भारत को उनकी कमी नहीं खलनी चाहिए।
2: ऐसा कभी भी नहीं रहता कि अगर एक खिलाड़ी के रिटायर होने के बाद, मेरे को लगता है कि वो एक हमारा देश का सिस्टम है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उसमें तैयार होते हैं और वो टीम को करते हैं इंडिया को सब।
0: हरपाल सिंह ये भी कहते हैं कि अगर भारत को विश्व चैंपियन बनना है तो खिलाड़ियों के साथ साथ कोचिंग स्टाफ की एक अहम भूमिका रहने वाली है।
2: सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक है, मेरी और मेरी गुड विशेज है टीम के साथ। और मेरा मानना यह है कि हॉकी एक ऐसी है कि जिसमें हम एक प्लेयर पर राय नहीं कर सकते हैं और एक प्लेयर को हम उसका कोई भी श्रेय नहीं दे सकते हैं। एज ए टीम गेमर, एज ए टीम ही जब तक हम खेलेंगे 11 अंदर और जो 7 लोग बाहर हैं वो, और इंक्लूडिंग जो कोचिंग स्टाफ और इन सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, कोचिंग स्टाफ का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। जो प्लेयर खेलता हमें मैदान में दिखता है वो के लिए बाहर काफी ज्यादा मेहनत हो चुकी होती है। और मेरी शुभकामनाएं सबको, हरमन है, मनप्रीत है, दिलप्रीत है, काफी लड़के हैं उसमें, सुमित है, जो काफी नए और नए लड़के हैं और काफी ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है कि इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर भी और फ्रेश प्लेयर भी हैं।
1: भारत विश्व कप में पूल डी का हिस्सा है जिसमें उसका सामना इंग्लैंड, वेल्स और आर्च राइवल्स पाकिस्तान से होगा। पहला मुकाबला शनिवार स्वतंत्रता दिवस के दिन होगा जिसमें भारत वेल्स का सामना करेगा।
0: उसके बाद दूसरा मुकाबला सोमवार 17 अगस्त इंग्लैंड से होगा। तो वहीं आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला 19 अगस्त पाकिस्तान के विरुद्ध। 4 में से शीर्ष 2 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी।
1: तो भारतीय टीम को हमारी शुभकामनाएं।
0: जहां एक तरफ भारतीय सीनियर टीम्स विश्व कप की तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं भारतीय पुरुष एवं महिला सब जूनियर टीम इस वक्त ओमान के मस्कट में FIH यूथ हॉकी फाइव्स एशियन चैंपियनशिप 2026 में शिरकत कर रही हैं। हॉकी फाइव्स हॉकी का एक नया स्वरूप है जिसमें दोनों टीम में 11 खिलाड़ियों के बजाय केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। मैदान छोटा होता है और खेल भी थोड़ा तेज होता है। यू समझिए जैसे बास्केटबॉल में 3x3, क्रिकेट में T20 और चेस में रैपिड और ब्लिट्स फॉर्मेट्स आए हैं, उसी तरह हॉकी में हॉकी फाइव्स। इसके बारे में और बता रहे हैं हरपाल सिंह।
2: ये हॉकी फाइव काफी सालों से चल रहा है, लास्ट का इवन के वर्ल्ड कप भी होता है और ये एक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 प्लेयर जो ऑन फील्ड होंगे और उसमें थोड़ा हॉकी का इंटरवल भी होंगे और फास्ट हॉकी को खेलने का और थोड़ा ग्राउंड का डायमेंशन है वो थोड़ी कम करके इसको एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से हम हॉकी को और इंटरेस्टिंग कर सकते। इसमें मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हॉकी में स्किल बेस्ड गेम है और चाहे फाइव ए साइड है चाहे फुल गेम है 11 ए साइड है, तो दोनों का सेम स्किल सेम स्टिक है सेम उसमें, हाँ उसमें कुछ डिफेंसिव जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, डिफेंडिंग जो हमारी पोजीशन है उसमें ज्यादा डाउन रहना पड़ेगा उसमें चेंज आ जाएगी, लेकिन वो अगर उसमें हमारे जो नॉर्मल जो 11 ए साइड होगा फायदा ही मिलेगा क्योंकि जितना भी हम डीप एरिया में शूटिंग सर्कल के आसपास अब डीप रहकर हम टैकलिंग करते हैं तो उसका हमारा काफी फायदा होता है। मैं सेम स्किल से हॉकी खेल रहे हैं फाइव ए साइड या 11 साइड है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
1: दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी, छोटा मैदान और तेज तरार आक्रामक हॉकी को प्रमोट करता है हॉकी फाइव।
0: जैसा हरपाल सिंह ने बताया कि स्किल वही है और इसलिए इसमें अच्छा प्रदर्शन करने का फायदा जरूर पारंपरिक हॉकी में भी मिलता है और ऐसा ही कुछ भारत की सब जूनियर महिला टीम और भारत की सब जूनियर पुरुष टीम कर रही है। सोमवार को यूथ एशियन चैंपियनशिप में महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया तो वहीं पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 7-3 से। महिला टीम के लिए दिव्या ने हैट्रिक लगाई तो वहीं संदीपा कुमारी और नौशीन नाज ने 2-2 गोल किए। नीलम टोपनो ने भी एक गोल दागा।
1: पुरुष टीम के लिए राहुल यादव ने, करण गौतम ने और प्रहलाद राजभर ने एक एक गोल किया। रोमित पाल और कप्तान केतन कुशवाहा ने 2-2 गोल किए।
0: आज पुरुष टीम का मुकाबला ओमान से तो महिला टीम का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा।
1: छोटा फॉर्मेट है तो एक मुकाबले से जी कहां भरेगा।

0: महिला टीम का दूसरा मुकाबला चीन से और पुरुष टीम का दूसरा मुकाबला आर्च राइवल्स पाकिस्तान से होगा।
1: क्या कुछ घटता है इन मुकाबलों में, उस पर नजर बनी रहेगी और खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम आपको अपडेट देते रहेंगे।
2: भारत की टीम है बाई तरफ जहाँ पे अब्बास अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है।
1: तो क्या इस बार भी भारत विश्व हॉकी चैंपियन बनेगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन नजर हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी है जिनका आगाज होने वाला है 23 जुलाई से और इस बार पैरा खिलाड़ी भी अच्छी खासी संख्या में हिस्सा लेने वाले हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेलों में जो कि खेले जाने वाले हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और वहां पर क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सुनते हैं खास रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी की, जिन्होंने आज भारतीय पैरा खिलाड़ियों को रवाना होने की एक जो रस्म होती है उसमें उन्होंने शिरकत की और बातचीत की कुछ खिलाड़ियों से, उनसे पूछना चाहा कि तैयारियां कैसी हैं, उम्मीदें कैसी हैं और साथ के साथ क्या कुछ हम अपेक्षा कर सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से। आइए सुनते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी की ये खास रिपोर्ट।
3: जब इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। भारत के पैरा खिलाड़ी इसी जज्बे के साथ अब ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने 28 सदस्यीय भारतीय पैरा दल को भव्य विदाई दी। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पीसीआई अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया, चेयरपर्सन डॉक्टर पायल कनोडिया और हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि खिलाड़ियों में इस बार अलग ही जोश है।
4: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आज पैरा खिलाड़ियों की सेंड ऑफ सेरेमनी और मैं हर एथलीट को जानता हूं। अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पर उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
3: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 28 सदस्यीय पैरा दल 5 खेलों में चुनौती पेश करेगा। दल में 11 पैरा एथलीट, 7 पैरा पावर लिफ्टर, 5 पैरा तैराक, 1 पैरा ट्रैक साइक्लिस्ट और 4 महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी 3x3 टीम में शामिल हैं। बात पैरा एथलेटिक्स टीम की करें तो इनमें देवेंद्र कुमार, दिलीप महादू, राकेश भाई भट्ट, रमेश सनमुगम, शुभमन जुयाल, मोहम्मद बासिल, सोमन राणा, सागर थायत, श्यांश द्विवेदी, शर्मिला और शिल्पा भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। हमने भारतीय पैरा दल में से कुछ खिलाड़ियों से उनकी तैयारियों और संभावनाओं के बारे में बात की। ये है डिस्कस थ्रोअर देवेंद्र कुमार।
5: अभी ये मेरा सेकंड कॉमनवेल्थ गेम है, फुल तैयारी के साथ अभी जा रहे हैं और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और इंडिया के लिए मेडल।
3: अपना पर्सनल बेस्ट बताइए क्या है और क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी दूर तक आप जा सकते हैं?
5: मेरा पर्सनल बेस्ट 52.5 है और उसे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे अपना।
3: अब मिलते हैं 100 मीटर T38 कैटेगरी में खेलने वाले युवा एथलीट राकेश भट्ट से।
6: यस, यह मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसमें मैं जा रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो पहली बार हम कॉमनवेल्थ में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
3: मेडल की होप्स क्या है बताइए?
6: यस, जैसे देखने जाए परफॉर्मेंस वहाँ अच्छे देंगे, हम 11.5 के नीचे तो हमारा पूरा मेडल का चांस है। हमारा पर्सनल बेस्ट देख के वहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिया के लिए मेडल लाए।
3: पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला का कहना है कि पहले से बेहतर होगा इस बार।
7: 2022 में भी कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किया था और अब भी कर रही हूँ, पीछे से अब बेटर है और अब से आगे बेटर होगा, आगे आगे बेटर होता ही जा रहा है। अच्छी सपोर्ट मिल रही है, बीसीआई और साई की और हमारी सरकार खिलाड़ियों को बहुत ध्यान दे रही है और अच्छी मेहनत करके हम भी पीछे नहीं हटने वाले, देश के लिए मेडल ला के देंगे।
3: तैयारियाँ आपकी कैसी है?
7: हमारी बेस्ट तैयारियाँ हैं, हम डेली 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं।
3: दूरी के बारे में बताइए, जो आप दूरी तय कर दी, जो फेंकती है जहाँ तक,
7: अब जो फेंक रही हूँ ये तो कॉमनवेल्थ का ही रिकॉर्ड है, एशियन की 2nd रैंक बनेगी, वर्ल्ड की 5th रैंक है, बाकी मेरा सपना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं कॉमनवेल्थ नेक्स्ट 2028 ओलंपिक।
3: यह 100 मीटर T47 में दौड़ लगाने वाले मोहम्मद बासिल।
8: इट इज माई फर्स्ट मेजर कॉम्पिटिशन, लास्ट ईयर आई स्टार्टेड द पैरा स्पोर्ट्स, दिस ईयर आई विल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू द बिग गेम्स, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट मेडल
3: मिलेगा वहाँ
8: मेडल में, होप मेडल बिकॉज रैंक में फर्स्ट में।

0: रैंक सो इट विल हो
1: व्हाट इज योर पर्सनल बेस्ट
0: 10.63
1: कॉमनवेल्थ गेम्स में टारगेट क्या है
0: 10.5
2: देश के पैरा खिलाड़ी कितने मेडल जीतेंगे यही सवाल हमने पैरा एथलेटिक कोच सत्यनारायण से किया
3: पैरा ओलंपिक डेफिनेटली हम लोग 7 मेडल जीतने का उम्मीद कर रहा है 5 मेडल तो कंफर्म्ड है 100% है 2 मेडल नीचे ऊपर हो सकता है मैं एथलीट होके बोलता हूँ एथलेटिक्स पैरा का बहुत अच्छा करेगा
1: जो एथलेटिक्स टीम जो आपको दी गई है जो

0: इसे क्या होते हैं।
1: आवाज शर्मा जी, आवाज आपकी समझ में कम आ रही है थोड़ा सा, या तो बाहर निकलो या डायरेक्शन बदलो आप।
0: मैं बिल्कुल बाहर ही बैठा
1: हाँ जी, हाँ जी
0: बाहर द्वारा
1: जी बताओ।
0: में फिर उस नाम फटेरा फटेरा
1: फटेरा डालिए
0: हाँ
1: दूसरी बार में जी।
0: तो बहुत लेकिन तीन पौधे में 3-4-5%
1: आवाज कम
0: खेत
1: समझ में आ रही है डॉक्टर साहब,
0: में
1: पर जो समझ में आया
2: जी,
1: उसके हिसाब से
2: जिसमें
1: मैं उसे बताऊं।
2: हम आपको समझ पाए हैं कि उसमें आपके यहाँ पर सुंडी उसके अंदर है, आपने पहले उसमें कोराजन का स्प्रे करा, जबकि आग्रह मैं आपसे करूँगा कि कोराजन का स्प्रे ना कराएं, भविष्य में कोराजन की ड्रेंचिंग कराएं, धार बना के पौधे के तने के पास उसको डालें। और यदि आपने पौधे के केस में CTPR कोरिएंटल एरिप्रोल का इस्तेमाल किया है, तो उसमें आपको दोबारा से फटेरा की आवश्यकता इतनी जल्दी नहीं थी, क्योंकि आपने बताया कि अप्रैल में ही आपने उसका गन्ने की बुआई की थी। ये बड़ा शॉर्ट पीरियड है, इस शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि उसका वेटेबल पीरियड ही उस दवाई में खुद ही एफिशिएंसी इतनी है कि वह 2 से 3 महीने तक खुद ही कंट्रोल करती है। लेकिन यदि आपको प्रभाव नज़र आ रहा है, तो आप उसमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड के साथ भी जा सकते हैं, आप उसमें इमीडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 17.8 का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी जो सुंडी है वो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने में मदद होगी। और क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आपने पहले से ही फटेरा इस्तेमाल कर दिया है, तो अभी उसका संभावित समय, क्योंकि आपने उससे पहले करो CTPR की, फिर दोबारा से फटेरा आपने इस्तेमाल कर दी उसमें, तो उसका मैं समझता हूँ अभी तो उसी का ही समय चल रहा है, वो पौधे में सर्कुलेशन में रही होगी। यदि संभावना आगे सुंडी बढ़ने की लगती है, तभी आप स्प्रे करें, अन्यथा इतनी जल्दी जल्दी स्प्रे ना करें, नहीं तो पौधे उस कीट के अंदर रेजिस्टेंसी पैदा हो जाएगी, जिससे दवाइयों का प्रभाव कम आना शुरू हो जाएगा।
1: अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मिली बग पे आप बता रहे थे किसानों को,
2: जी,
1: तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: हाँ, तो मिली बग के लिए मैं बता रहा था कि कॉर्नर से शुरू होता है और धीरे धीरे फैलता है, आपके 2-3 झुंड से शुरू होगा, फिर 5-6 झुंड, फिर उसके बाद वो अपना क्षेत्र बढ़ाता है। लेकिन इसमें किसान भाइयों को लगता है कि दवाइयाँ कारगर सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि वो स्प्रे करते हैं, उसके स्प्रे करने में, एक तो किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप उसके साथ में सर्फेक्टेंट जरूर लगाएं, स्टीकर उसके साथ अवश्य लगाएं। उसका लॉजिक बताता हूँ, दोनों चीज़ें हैं, एक तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड लेना है, जब भी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए इमीडा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइमेथियोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसीफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी दवाइयां मिलीबग को। लेकिन इनसे ज़्यादा, दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस झुंड के अंदर उसमें मिलीबग लगा है, उसकी आपको पत्ती उतारनी है। यदि आपके 5 झुंड में, 10 झुंड में या 8 झुंड में लगा है, सबसे पहले उन सभी गन्नों की नीचे की सारी पत्तियों का, मतलब है लीफ शीथ सहित, लीफ शीथ का मतलब है वो पत्ती जो गन्ने के तने पर चिपकी रहती है, वो भी हटानी है, क्योंकि ये मिलीबग गन्ने के तने के ऊपर बैठा रहता है लीफ शीथ के अंदर। तो ऐसी दशा में लीफ शीथ के अंदर तक दवाइयों का जाना, फिर वहां पर प्रॉपर उसकी बॉडी में प्रवेश करना, क्योंकि मिलीबग स्वतः ही, आप देखेंगे किसान की भाषा में बात करूं, क्यों वैक्स कोटेड एक मोम सा उसकी बैक साइड पे होता है, और यदि हम उसमें सर्फेक्टेंट मिला देंगे, तो वो दवाई पौधे के शरीर में जल्दी से प्रवेश करेगी, उस कीड़े के शरीर पर जल्दी से प्रवेश करेगी, और पत्तियां हम हटा देंगे तो निश्चित तौर से हम मिलीबग से राहत ले पाएंगे। और यदि पत्तियां आप नहीं हटाते हैं, तो किसी भी दवाई का उस पर असर होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां पर आप पत्तियों को रिमूव करें।
1: तो किसान बहनों भाइयों, ये ध्यान आपने रखना है, अगर मिलीबग का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर साहब ने जो सावधानियां बताई है, जो दवाई बताई है, उसको उसी तरीके से लगाना है, पत्तियां भी हटानी है ताकि असर फसल पे ज्यादा से ज्यादा हो और आप नुकसान से बच सकें।
2: जी
1: जैसा आप जानते ही हैं, आज का जो कार्यक्रम है उसका विषय है गन्ना फसल में कीट नियंत्रण। डॉक्टर विकास कुमार मलिक, डॉक्टर US तेवतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी समस्या हो आपकी गन्ने से संबंधित, बेझिझक आप फोन कर सकते हैं 23-42-10-81, 23-42-10-83, ये हमारे फोन नंबर हैं। इनसे पहले जब दिल्ली से बाहर से फोन करें या आप मोबाइल से फोन करें, तो दिल्ली का जो STD कोड है 0-1-1, ये जरूर लगा लें आप। डॉक्टर साहब, तेवतिया जी से पूछना चाहूंगा, जैसे अभी बात आई दवाई की, खाद की, ये बड़ी समस्या रहती है जो किसान है, अक्सर हम, आप भी सुनते हो या फोन भी करते हैं, दवाई नहीं मिलती जी, खाद नहीं मिलती।

0: कोराजन लेते हैं, हमारा वो आईपीएल पोर्टजन के नाम से है, तो वो हमने बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। जो फटेरा कहते हैं हमारा पोटेरा है, पोटेरा हमारा पोटास की कंपनी, तो उससे हमने नाम लिया है। तो वो आप ये देखेंगे, अगर हम मार्केट में देखेंगे, इतनी सस्ते दामों में किसानों को 50% जो मार्केट में उपलब्ध है उससे 50% पे हमारी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले मॉलिक्यूल हमारे किसानों के लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन ये है कि किसान भाई जो नकली दवाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उससे उन्होंने उनको पूर्ण छुटकारा मिल गया, बिल्कुल बेधड़क होकर निश्चिंत होकर आईपीएल के पेस्टिसाइड डाल सकते हैं। हमने सभी शुगर मिल में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खुलवाए, उस पर एक ही जगह पे उनको सब चीज उपलब्ध है, पूरे फर्टिलाइजर, क्योंकि हमारी कंपनी तो केवल ये तो है नहीं कि भाई शुगर की कंपनी है, और जो कंपनी शुगर की मिल है उनके तो फर्टिलाइजर है नहीं, हमारे पूरा रेंज फर्टिलाइजर का है हमारा, उनको सबको उपलब्ध करा रहे हैं, उनको क्रेडिट पे उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी बात, हाँ, क्रेडिट पे उनके गन्ने का जब पर्ची पड़ेगी उससे पैसे दे सकते हैं वो, तो अभी उनको जो है बिल्कुल ये लगाइए कि पर्ची उनका चढ़ा लेंगे ना, और बाद में उनसे लेंगे, तो ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा जो केंद्र विभाग है उनके खेतों पे जा जाके आइडेंटिफाई करता है कि भाई किस कीट की जरूरत है, किसकी ये किस दवाई की
1: कीटनाशक
0: जरूरत
1: की
0: है,
1: जरूरत है।
0: कीटनाशक की जरूरत है, किस क्या बीमारी लगी हुई है, उनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से वहीं पे उनको पहुंचाते हैं उनको दवाई। तो ये सुविधाएं सारी वो दे रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी सुविधा तो हम ये दे रहे हैं कि देखिए आईपीएल ने गन्ने की पाठशाला शुरू कर रखी है, उनको यहाँ से हम अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बुलाते हैं और उनको जानकारी देते हैं कि
1: घर
0: भाई अपने
1: बैठे
0: अपने फसलों में ये आप करिए, उनको ये देखिए, हम वैज्ञानिक को फोन के द्वारा उनसे मिलवाते हैं और महीने में 2 बार मिलवाते हैं, तो वो अपनी खुल के अपनी समस्या को
1: रख
0: रखें
1: सकते हैं
0: और घर बैठे समाधान पाएं।
1: जी। और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर तिवती आपसे। अब लौटते हैं अपने जो मेन मुद्दा है, कीट की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बात मेरे कीट और भी पूछूं, उससे पहले मेरे दिमाग में आई एक बात।
0: जी जी
1: बरसात का सीजन है डॉक्टर साहब,
0: जी
1: है
0: जी
1: कीटनाशक आप बता रहे हो भाई ये छिड़को ये छिड़को, और मान लो छिड़क दिया
0: जी
1: और बारिश होगी
0: जी
1: तो बेकार हो गया।
0: हाँ, देखिए
1: हाँ
0: इसमें ये है कि ये ध्यान रखना पड़ेगा किसान को कि जिस दिन बारिश होने का ना हो, संभावना ना
1: संभावना
0: हो,
1: हो गया आज नहीं हो
0: उस
1: रही
0: दिन करे कम से कम 4-5 घंटे उसको रुकना चाहिए कि बारिश ना
1: ना
0: हो।
1: हो।
0: और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो बरसात और जो ह्यूमिडिटी, गर्मी, जो मौसम ये बनता है, जो गन्ने के लिए अच्छा है, वो कीटों के लिए
1: ये
0: भी
1: भी
0: अच्छा, उसी समय कीट भी ज्यादा
1: अच्छा
0: आते
1: है। जी जी
0: हैं, तो
1: जी
0: वो उनको भी अच्छा लगता है। तो इस
1: हाँ
0: समय क्या है कि अपनी फसलों से किसानों को बात करनी चाहिए। बात कब करेंगे भाई? बात जब खेत पे
1: खेत
0: जाओगे
1: पे जाओगे।
0: और अंदर तक जाओ, ये नहीं
1: हाँ
0: एक तरफ से ये आधे गन्नों से तो बात कर ली, वो तो
1: हाँ
0: बेचारे देख रहे हैं कि मेरा मालिक मेरे पास भी आएगा भाई, चारों तरफ चक्कर लगाएं, और हो सके तो बीच में भी
1: बीच में भी
0: थोड़ा,
1: देखे।
0: जहां पे आपकी बंधाई हो गई है,
1: हाँ
0: अब तो घुस सकते हैं
1: घुस
0: उसमें,
1: सकते हैं।
0: तो बीच में भी उनसे बात करके आए, तो वो बताएगी कि मेरे को भाई ये चाहिए, तो वो सुने। तो देखिए, बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि भाई खेती जब ही होती है जब उस पर रोजाना पैर रखा जाता
1: बिल्कुल
0: है,
1: सर।
0: अपनी जमीन पे, अपने खेतों पे,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये चीजें ध्यान रखें किसान भाई, तो बिल्कुल उनकी फसल बढ़िया होगी, सब चीजों का ध्यान रखें। और गन्ना ऐसी फसल है, और हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के तो किसान गन्ना गन्ना ही बोते हैं, 90 से लेकर 95% तक उनका तो गन्ना होता है, तो गन्ना ही उनकी तो रोजी रोटी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो भाई उनसे तो उनको उसके अलावा कोई काम नहीं, तो उसमें तो जा जाके उनको बात करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, अब उन्होंने अपनी फसल वो बड़ी कर रखी है,
1: जी
0: जैसे बच्चे को पालते हैं ना, तो पूरी फसल अब दो
1: बिल्कुल।
0: 3 महीने बाद कटने लगेगी, इस समय उसका ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय बंधाई टाइम पे करें, नहीं तो गिर गई तो आपकी मेहनत बेकार गई।
1: बिल्कुल
0: तो ये चीजें ध्यान रखना, और मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपने खेतों पर बराबर जाएं, उनका ध्यान रखें, कीटों को देखें, पत्तियों को पलट पलट के देखें, कोत को देखें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे मिलीबग वो कोत में भी अंदर तक जाती है, वो घूमती रहती है, छोटी छोटी चींटियां होती
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो उनको भी ध्यान रखें, और जितनी जल्दी वाच करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और अपने नुकसान से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ठीक वैसे ही हमारी फसलों का हमें ध्यान रखना है। और बड़े सादे शब्दों में डॉक्टर साहब ने बताया।

0: दिया कि भाई बात करो जाके, फसल को देखो, उससे बातचीत करो, क्या समस्या है। बच्चों से भी पूछते ही हम क्यों
1: जी
0: रो
1: जी
0: रहा है भाई, क्या
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: समस्या है। तो वैसे ही ठीक आपको अपने फसलों का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब
1: जी
0: अब कीट पे आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसमें बल्कि एक मिस कर रहा था, क्योंकि हम केमिकल की तरफ रुझान ज़्यादा रखते हैं, हमारे किसान भाई को भी
0: जी।
1: केमिकल ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं उसके साथ साथ एक सुझाव और देना चाहूँगा कि जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक विकल्प जरूर अपना के देखें। एक नीम ऑयल आता है जो मिलीबग या सकिंग इंसेक्ट, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा कारगर सिद्ध होता है। तो 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से नीम ऑयल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट, और वो ऐसा एक तरीके का बायो पेस्टिसाइड है कि आप उसे इस्तेमाल करेंगे, उसके एक एक महीने के इंटरवल पे 2 बार आप इस्तेमाल कर देंगे तो हो सकता है आपके खेतों में सकिंग इंसेक्ट का प्रकोप ही कम हो।
0: जी। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, फोन देखते हैं किसका है।
1: जी
0: हेलो,
2: हेलो, नमस्कार सर। सर
0: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: जी, मैं ललित कुमार बात कर रहा हूँ, जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से।
0: जी ललित भाई, बताइए क्या सवाल है।
2: सर जी, हमारी जो पौधा की जो गन्ने की फसल है, इसमें ऊपर जो थोड़ा सा कीड़ा लग रहा है फिलहाल में, हमने इसमें दवाई भी लगा दी है, कीटनाशक भी, लेकिन
1: जी कितने दिन पहले लगाई?
2: ये लगभग सर अभी 15 दिन हो गए लगे हुए।
1: अच्छा, 15 दिन हो गए। और जो कीट लगा है फिलहाल, वो किस जगह पर लगा है? उसमें
2: सर ऊपर फुलक में,
1: मतलब में सुंडी है उसकी, गोब के अंदर या पत्ती पर कोई काटने का है?
2: सर जैसे आप कोशिश ये कैसे ये है, जैसे आप गन्ने के पूरा पौधा हुआ
1: जी
2: और ऊपर जाकर के वो बिल्कुल शंकुआ सा बन जाता है।
1: देखो, दो तीन चीजें हैं। आर्मी वर्म का भी अटैक हो सकता है, कुछ जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें उसका काटे हुए का जैसे मलमूत्र टाइप होता है, वहाँ हिस्से कुछ कटे हुए चून सा टाइप पड़ा रहेगा, एक तो वो कंडीशन होती है। एक टॉप बोरर लगा है तो उसके अंदर गोब के अंदर वो सुंडी उसके अंदर चली जाएगी उसको खाते हुए। तो उस किस प्रकार
2: जी
1: के लक्षण आपके खेत में नजर आ रहे? पौधा है या पेड़ी है?
2: पौधा है सर, पौधा वाले
1: पौधा
2: पौधा है।
1: है। कौन से लक्षण नजर आ रहे हैं? गोब सूख रही है, गोब
2: गोब,
1: उसके
2: हाँ ये सर सूख रही है।
1: ऊपर से गोब सूख रही है।
2: हाँ
1: एक वो आपने गन्ना चीर के देखा है, अभी उसकी गोब को चीर के देखा, उसके अंदर सुंडी है या नहीं?
2: सर जी, ये नहीं देखा
0: हाँ,
2: अभी,
0: चीर के नहीं देखा
1: है ना?
0: डॉक्टर साहब।
1: देखो, बगैर चीर के देखे दो तीन चीजें हैं, क्योंकि इस समय बीमारी भी, टॉप रोट एक बीमारी भी चल रही है, उसमें भी गोब ऊपर अगोला सड़ जाता है, तो उसकी भी
2: जी
1: संभावना उसमें हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो कोई भी आप जाते हैं, पर मेरा तो आग्रह आपसे यही रहेगा कि आप दुकान पे भी जाएं एनालाय दवाई लेने के लिए, तो पौधा लेकर जाएं। और इसी प्रकार यदि यहाँ पे आप उसे डायग्नोस कर लेंगे, पहले एक बार डाइसेक्शन कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका सही इलाज आप ले पाएंगे, अन्यथा दिक्कत उसमें रहेगी कि संभावित तौर पे उसका इलाज बता पाना उतना अच्छा नहीं रहेगा।
0: ललित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बातचीत जारी रखेंगे, अभी थोड़ा ब्रेक के लिए रुकते हैं।
1: जी
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
4: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और

0: देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगी। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी, महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड एनएचपीसी ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित एनएचपीसी तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। एनएचपीसी ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। एनएचपीसी ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस की मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुने फोन इन कार्यक्रम का शेष भाग।
2: तो एक है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम का, और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद,

0: मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
1: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
2: आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। इसका विषय है गन्ने की फसल में कीट नियंत्रण।
3: और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, प्रभारी गन्ना उत्कृष्टता केंद्र KVK बागपत उत्तर प्रदेश से। और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। और गन्ना की फसल में कीट नियंत्रण से विषय संबंधित जो भी आपकी कोई समस्या हो तो आप सीधे विशेषज्ञ से जुड़िए। और जो हमारा फोन नंबर है,
2: हमारे फोन नंबर है 23 42 10 81। हमारा दूसरा नंबर है 23 42 10 83। तो दिल्ली से बाहर के जो भी श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं तो आप 011 अवश्य लगाएं।
3: चलते हैं स्टूडियो की तरफ।
4: डॉक्टर तेवतिया, डॉक्टर मलिक जी, आपका पुनः कार्यक्रम में स्वागत।
5: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
4: और आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, एक बार धीरे धीरे फोन नंबर और बता दूं जी, ताकि जो हमारे सुनने वाले बहन भाई या किसान हैं वो आराम से नोट कर लें। अगर कोई समस्या गन्ने की फसल में उनको आ रही है, दिखाई दे रही है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि बातचीत करो फसल से
5: जी,
4: तो बातचीत करते टाइम अगर फसल ने कुछ बता दिया कि ये समस्या है मेरे साथ
5: जी,
4: तो वो हमारे तक जरूर पहुंचाइए। फोन नंबर 23 42 10 81। दूसरा नंबर है 23 42 10 83। स्टूडियो के नंबर हैं, दिल्ली के हैं, तो इससे पहले आप जो दिल्ली का स्टडी कोड है 011 आप जरूर लगाइएगा, ताकि आप सीधे ही विशेषज्ञों से बात कर सकें। डॉक्टर मलिक जी, हम चर्चा कर रहे थे कीट की, क्योंकि कीट जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा देता है फसलों को, खासतौर पर गन्ने की बात हमने करी। मिठास है, मिठास पर सब आकर्षित है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
4: तो कीट भी होते हैं।
5: बिल्कुल।
4: तो और कौन कौन से कीट हैं जो इस समय नुकसान पहुंचा सकते हैं?
5: इसमें जैसे हमने अभी बात कर ली है मिलीबग के बारे में, मैं बताया था और उसमें हमने सजेस्ट भी किया कि आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा
4: जी।
5: और मैं भी तेवतिया, डॉक्टर तेवतिया जी की ही सलाह आप लोगों से देना चाहूँगा, जब भी आप फ़ोन करें या कहीं भी दवाइयाँ आप लेने के लिए जाते हैं किसान भाई, मेरा आग्रह है कि आप या तो कृषि विशेषज्ञ से पहले सलाह ले लें उसके बाद दवाइयाँ लाएं
4: जी,
5: या पौधा लेकर ही जाएं। जब तक डायग्नोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे केंद्र पर जो मेरे पास किसान भाई आते हैं या मैं किसी बड़ी गोष्ठी में जाता हूं, मेले में जाता हूं, तो मैं किसान से विशेष आग्रह करता हूं कि कृषि की गोष्ठी है तो गन्ना आपके हाथ में
4: होना चाहिए,
5: और या गन्ने की गोष्ठी है या एग्रीकल्चर की गोष्ठी है तो प्रभावित पौधा, खराब पौधा आपके हाथ में हो, ताकि डायग्नोस करके चीजें वहां बताई जा सके। अदरवाइज ज्योतिष विद्या लगानी पड़ेगी, क्योंकि सिम्टम हमारे किसान भाई वहां पे उस लेवल पे नहीं बता पाते हैं, और तीनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाती है। किसान भाई से पूछो किस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं जी, सारा गन्ना पीला पीला हो गया, सारा गन्ना सूख रहा है।
4: डॉक्टर इस पर चर्चा करेंगे, एक फोन ले लेते हैं
5: जी।
4: हेलो,
6: हेलो साहब, नमस्कार।
4: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं?
6: सर मैं करतार सिंह बोल रहा हूँ, अलवर हरियाणा से।
4: जी करतार भाई, बताइए क्या सवाल है?
6: हमारा सवाल है जी, मैं गन्ने की खेती करता
4: हूँ। हाँ जी।
6: सर हमारी फसल में ग्रोथ कम है
5: जी।
4: अच्छा,
6: क्योंकि हमने उसमें गाय का गोबर, देसी खाद डाला हुआ गाय के गोबर का।
7: करतार जी आइए बताइए कि आपने अपने मिट्टी की परीक्षण कराए, टेस्ट कराई है मिट्टी?
6: मिट्टी की जांच तो नहीं कराई।
7: हाँ देखिए, ये बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें भी जरूरत पड़ती है मनुष्य को टाइम टाइम पे अपना ब्लड की जांच कराने के लिए, इसलिए मिट्टी की जांच कराई और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की जांच कराई है और माइक्रोन्यूट्रिएंट की जांच कराई है, NPK की जांच कराई है, pH और EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और pH की जांच कराई है। जब तक आप जांच नहीं कराओगे, देखो सही से सलाह देना बड़ा मुश्किल है।

0: हम आपको बिना देखो बिना देखे मरीज को अगर डॉक्टर दवाई देने लगे और गलत दवाई हो जाए तो आप ये कहेंगे कि भाई इन्होंने गलत सलाह दे दी। तो आप मिट्टी टेस्ट कराइए और मिट्टी टेस्ट करके कृषि विशेषज्ञ से किसी से सलाह लीजिए और उसके बाद में कोई भी उपचार कीजिए। देखिए जो आपकी अगर ग्रोथ कम है तो वो मिट्टी की ही प्रॉब्लम है फिर, या आपकी बीज तो आपने, मैं सोचता हूँ कि बीज तो अच्छा ही डाला होगा आपने।
1: सर वो वैरायटी है 0238।
0: 0238 बहुत बढ़िया वैरायटी है तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी है, तो उसकी तो कम ग्रोथ है नहीं, सबसे सबसे पहले चलती है वो, तो सबसे ऊंची चलती है। तो प्रॉब्लम जमीन में हो सकती है, आप मिट्टी टेस्ट कराइए और हम आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान बताएंगे।
1: ठीक है सर।
2: करतार भाई बहुत
1: सर
2: बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: हमने एक में अंदर घोषित सर्वे किया जी, तो
2: हाँ
1: रोग तो कोई है नहीं जी, कैसा भी
0: पत्तियां पीली हैं,
1: बिल्कुल हरी कंच पत्ती है, छोटा जैसा कलर है। हाँ
0: और ग्रोथ कम है।
1: जी, बस ग्रोथ समय ये
0: कब बोई थी?
1: पेड़ी है जी,
0: पेड़ी है। अच्छा।
1: इसमें अभी कम करना, ज्यादा ज्यादा 4-4 फुट का हुआ है,
0: और मोटाई कैसी है?
1: मोटाई अच्छी है जी बिल्कुल। क्या
0: और टिलरिंग कैसी है? ब्यात
1: जी,
0: ब्यात ब्यात
1: व्यास होगा जी करीब की करीब?
0: अच्छा, अभी 6 इंची हुआ है ब्यात। ब्यात होता है कल्ले जो निकलते हैं नीचे से। अच्छा
1: कल्ले तो बहुत है जी, कल्ले तो मतलब ये समझो जुड़ गए, 28-30 27 है। हाँ
0: अच्छा तो हो सकता है ये भी कारण हो कि ज़्यादा कर ले हैं, तो वो सारे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो, तो एक एक को कम मिल रहे हैं, तो इसलिए भी ग्रोथ कम हो सकती है। दूसरा ये है कि पेड़ी आपकी पौधा करना कटा कब था ये?
1: कटा जी अप्रैल में। हाँ
0: अप्रैल में कटा है। अच्छा तो उसके बाद में आपने खाद पानी अच्छी तरह दिया, उसमें जुताई वगैरह करवाई इसकी?
1: सर, मैंने इसमें वो पताई हटा के इसको ट्रैक्टर से जोतवाया जी, पहले हल से, ट्रैक्टर के हल से ही जोतवा के फिर इसमें 2 ट्राली देसी खाद डाला गाय के गोबर का। आधा एकड़ जमीन है जी मेरे पास, और वो गाय का गोबर भी जो डाला था मैंने फसलों से डाला था जी, कूट कूट पे। हाँ
0: अच्छा
1: जी,
0: तो जो
1: तो
0: गोबर था वो सड़ा हुआ था या कच्चा था?
1: नहीं बिल्कुल सड़ा हुआ जी,
0: अच्छा तो आपने तो अब हमारे हिसाब से तो सारे काम सही कर रखे हैं।
1: और फिर उसमें जी फावड़े से 3 खोदी लगाई है। ठीक है
2: बहुत बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया। तो आप एक काम करिए, आप कौन सी शुगर मिल में देते हो?
1: शुगर मिल पलवल है जी, कोऑपरेटिव शुगर मिल
0: आप वहां जो गन्ना विशेषज्ञ होगा कोई, उसको एक बार बुला के अपना खेत दिखाइए,
1: ठीक है सर।
0: क्योंकि ये जब खेत आपको पूरी तरह देखेगा जब विशेषज्ञ, तभी बता सकता है। ठीक है, ओके जी, ओके,
2: करतार भाई बहुत
0: ओके।
2: बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए आपका।
1: धन्यवाद जी।
2: और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि भाई जो है आप पौधा जो है गन्ने का, जो इसमें बीमारी हो, कीट लग रहा हो, तो वो लेके आओ,
3: जी
2: ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया आपने।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: हाँ,
3: बिल्कुल
2: ये
3: सर।
2: नहीं कि डॉक्टर के पास गए और बताया कि जो हमारे बच्चे का ये हो रहा है, ये
3: जी
2: हो रहा
3: जी
2: है। तो
3: जी
2: डॉक्टर साहब ने भी जो बात कही है यही कही है कि
3: बिल्कुल
2: आप
3: बिल्कुल
2: कम से कम डॉक्टर तक तो पहुंचे
3: बिल्कुल
2: जी। डॉक्टर साहब बताइए
3: जी।
2: अपनी।
3: नहीं, वही चीज़
2: जी जी बोलिए।
3: वही चीज़ें थी कि हम जब डायग्नोस करेंगे तो चीज़ों को अच्छे से तभी देख पाएंगे जब हमारे पास पौधा होगा। वही मैं सुझाव किसान भाइयों को देता हूँ। और दूसरा, जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में हमारे कुछ क्षेत्रों में माइट भी देखने को मिल रही है, जिसको हम वेब माइट, रेड माइट या अन्य कई प्रकार की माइट्स होती है, जो वह हमारे यहाँ पर देखने को मुख्य रूप से मिल रही है वो वेब माइट है। पत्ती की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट से लगाते हुए वो
2: जी
3: चलती है, और जिसके अंदर वो अपने वहाँ पर शिशु देती है, बच्चे उसके अंडे बच्चे वहाँ पर उसके उसमें होते हैं, और वे वहाँ पर रस चूसने के कारण पत्तियाँ नीचे की तरफ से, क्योंकि वो क्लोरोफिल का वहाँ पर चीज़ें क्लोरोफिल को खा लेते हैं, तो ऊपर फिर रेड कलर का पिगमेंटेशन बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, तो पत्तियाँ ऊपर से लाल नज़र आनी शुरू होती है,
2: जी
3: नीचे सफ़ेद रंग के, और लाइनर जो मिडरिप होते हैं, जो मध्य शिरा होती है, उसके बराबर एक सीधी लाइन के रूप में डॉट डॉट डॉट से लगते हुए चले जाते हैं, जिसको हम माइट बोलते हैं। पहला तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि यदि इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो उन खेत

0: खेतों की सबसे पहले तो मेड़ को साफ करें, खरपतवार को नियंत्रित करें
1: जी,
0: क्योंकि क्या हो रहा है, एक काफी किसान भाइयों के फोन कॉल भी आते हैं या मैं क्षेत्र भ्रमण करता हूं तो उसमें देखने को ये मिलता है कि किसान भाई स्प्रे करते हैं, उसका कंट्रोल होता है माइट का, लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद पुनः उसका असर आना शुरू हो जाता है। एक बड़ी अच्छी कॉमन सी बात हमारे किसान भाइयों के बीच में है
1: जी,
0: कि दो खेत है उनके बीच में एक मेड़ है
1: जी,
0: मैं अपने खेत पे स्प्रे करता हूँ, पड़ोसी अपने खेत पे स्प्रे करता है, मेड़ पे कोई सा नहीं करता,
1: कोई नहीं करता।
0: तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो मेड़ पे अल्टरनेट होस्ट के रूप में वहां पर रहती है और आपने स्प्रे किया, 10 दिन तक आपके खेत में असर है, उसके बाद वो माइग्रेट करके फिर वहां पे आ जाती है। और ऐसे ही पड़ोसी का है कि हमने मेड़ को छोड़ दिया है, मेरा किसान भाइयों से सबसे पहले आग्रह यही है कि या तो उसकी उस मेड़ को खरपतवार को वहां
1: साफ कर दें,
0: साफ कर दें, और या दूसरा विकल्प यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी नहीं है, तो आपसे आग्रह है कि जब अपने खेत पे स्प्रे करें तो उस मेड़ के ऊपर भी स्प्रे करें, वो अल्टरनेट होस्ट वहां पर ना छोड़ें कि वो उसके ऊपर वो आपकी वो माइट वहां पर रह जाए और उसके बाद वो पुनः आपके खेत पे अटैक कर पाए। तो इसलिए उसके लिए अलग अलग चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला तो यही है। दूसरा, यदि पत्तियों पर ज्यादा प्रभाव आपको नजर आ रहा है और बॉर्डर पे बाहर की तरफ जहां खरपतवार होंगे, चाहे खेत के अंदर हो चाहे बाहर, वहीं पर ज्यादा असर आएगा, उन पत्तियों को यदि हटा पाना संभव हो तो सबसे अच्छा विकल्प तो वही है कि उन पत्तियों को, पौधे की पत्तियों को हटा दें, उन पत्तियों को ऊपर की चार पत्तियों तक वो माइट ज्यादातर नहीं पहुंचती है, हमेशा जो नीचे कर्व लेना शुरू करती है उन्हीं पर ही वो उसका असर ज्यादा होता है, ऊपर की खड़ी हुई पत्तियों पर कम होता है, इसलिए उन नीचे की पत्तियों को जो प्रभावित है उन्हें हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि नहीं हटा पाते हैं तो प्रोपोगाइट करके एक दवाई आती है एकेरिसाइट की, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा, एक बार उसका इस्तेमाल करें, दूसरी बार में आप सल्फर और इमिडा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको माइट में राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर दो बार आपको उसमें कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना होगा, लेकिन मेरा किसान भाइयों से पुनः यही आग्रह है कि जब भी स्प्रे करें माइट के लिए विशेष तौर पर मेड़ को जरूर कंसीडर करें। यदि मेड़ कंसीडर नहीं की, आप हर 10 दिन पे हर एक सप्ताह पे अपने खेत में स्प्रे करेंगे और नो डाउट वो माइट बार बार बार बार अटैक करेगी, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। किसान भाइयों को बीच में लगेगा भी कि बारिश हो गई है, वो कुछ डाउन है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने की, उसकी बच्चे आगे अंडे देने की कैपेसिटी बेहद ज्यादा है, तो इसलिए बहुत जल्दी से अपनी नई जनरेशन को भी लेके आती है, इसलिए हमें उसे कंट्रोल बड़े प्रॉपर तरीके से करना होगा जब भी कंट्रोल होगी, अन्यथा की दशा में दोनों के लिए नुकसानदायक है, केवल और केवल
1: पड़ोसियों
0: के लिए भी और हमारे लिए भी, और दूसरा इंडस्ट्री के लिए भी। मुझे प्रोडक्शन जाएगा, मेरा गन्ना वेट नहीं देगा, शुगर इंडस्ट्री का वहां पर रिकवरी नहीं देगा
1: जी, जी।
0: उसको रिकवरी पे इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन जाएगा, गलत प्रभाव जाएगा, हमारा उत्पादन पे जाएगा, हमारे किसान भाइयों को उसमें वजन मिलने की संभावना, गन्ना फोलियज देखने में हो सकता है अच्छा नजर आए बट वो गन्ने में सब सॉलिड, वहां पर उसमें वजन उस लेवल का नहीं बनेगा जिस लेवल का बनना चाहिए था।
1: तो डॉक्टर साहब ये बात अक्सर हम सभी फसलों के लिए करते हैं, आज तो क्योंकि विशेष कार्यक्रम है, गन्ने की बात हम कर रहे हैं
0: जी, जी।
1: और खरपतवार की जो बात करते हैं हम, जो कि भाई आपके खेत जो है खरपतवार से रहित होने चाहिए
0: जी जी,
1: क्योंकि खरपतवार में कीट पतंगे अपना घर बनाते हैं, बाद में वो फसल पे जाते हैं, जैसे आपने बता ही दिया क्लियर कट,
0: बिल्कुल
1: ये जो डोल है जो मेड है
0: जी,
1: उसकी सफाई रखो ना, तो भाई पैसे ज्यादा खर्च करो, दवाई उसमें डालो
0: जी जी,
1: तो पैसे बचाने हैं थोड़े से तो मेड की सफाई रखो
0: बिल्कुल,
1: और साफ करके जितना भी खरपतवार है या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो प्रभावित पत्तियां हैं
0: जी जी,
1: उनको भी ले जाके कहीं गड्ढे में दबाओ या नष्ट करो
0: वही,
1: नहीं कि भाई मेड पे डाल दिया और फिर
0: दोबारा से वो उसका अल्टरनेट होस्ट के रूप में फिर वही स्वतः वहां पे उसको मिल गई,
1: मिल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी सावधानी बरतो, तो आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, वजन अच्छा रहेगा, और जब मिल में ले जाओगे तो बढ़िया पैसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब चर्चा बहुत होगी है, एक मनोरंजन आपका करा देते हैं, एक लोकगीत सुनवाते हैं।
2: हाँ, किसानों को सुनवाइए
1: जी जी।

0: रुवैया ठंडी हवा चले, मेरे राजा से मिलना ना होए। तो राज रानी वर्मा की आवाज में डॉक्टर साहब ये लोकगीत
1: तो
0: सुना रहे।
1: नरेश जी आपने जो है अभी से सावन डिक्लेयर कर दिया पूरा।
0: अब जो माहौल बन गया डॉक्टर साहब, हमने कहा माहौल बनाओ ताकि सावन तक पहुंचते पहुंचते और
1: किसान भाइयों के दिमाग में आ गया होगा भाई
0: जी,
1: सावन
0: जी,
1: आने
0: जी,
1: वाला है तुरंत।
0: हाँ, सावन थोड़े दिन बच रहे हैं डॉक्टर साहब, सावन भी आ जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: और बरसात में जैसे हवा चलती है ठंडी, तो भाई आनंद तो आ गई है।
1: बिल्कुल
0: और उस पर
1: बिल्कुल
0: अगर सैया तो मिलना ना हो तो कष्ट होगा ही डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अब कष्ट की बात शुरू हो गई है, तो अब कीड़ा का जो कष्ट है,
2: हाँ जी
0: जो गन्ने में आ रहा है,
2: जी
0: आता
2: जी
0: है या आने की संभावना है,
2: जी
0: उससे कैसे हमारे जो किसान है हमारे, उनको कैसे बचाएं, तो और कौन से कीट इस समय दुविधा दे सकते हैं?
2: जी जो महत्वपूर्ण थे इस समय वर्तमान में, यही सारे कीट हमारे महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ साथ एक और कीट महत्वपूर्ण है, व्हाइट फ्लाई जिसको हम बोलते हैं, सफेद
0: सफेद
2: मक्खी।
0: मक्खी
2: जी
0: जी
2: वो भी गन्ने में आती है, और किसान भाई अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाइट फ्लाई में और आप माइट में,
0: जी
2: क्योंकि वे दोनों ही पत्ती की निचली सतह पर अपना एग लेइंग करती है, पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है। लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि यदि व्हाइट फ्लाई है तो वो एक लाइनर नहीं देगी, एक लाइन में अंडे नहीं
0: जो आपने
2: देगी।
0: बताया था
2: जी जी जी
0: जी
2: जो माइट में एक नेचर होती है उसकी, लाइनर एक लाइन बनाते हुए चलेगी सफेद।

0: उसको कवर करते हुए चलेगी।
1: जी
0: लेकिन जो व्हाइट फ्लाई होगी वो एक तो उसके लाइनर नहीं होगा, लाइन में नहीं देगी, किसान की भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा उसके कलर डिफरेंशिएट होगा, वो व्हाइट कलर से के अंडे होंगे, कहीं ब्लैक होगा कहीं व्हाइट होगा, स्पोर्टी टाइप से वो
1: जी
0: अंडे देगी, वो व्हाइट फ्लाई के अंडे होते हैं। और दोनों ही सकिंग इंसेक्ट है, रस चूसने वाले कीड़े हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम इसमें, क्योंकि ये प्योरता इंसेक्ट है व्हाइट फ्लाई, और इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाई आप इमीडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइफेंथ्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बनाएं और पत्ते को, पौधे को अच्छे से तर करें, और प्रयास करें इस समय जो बरसात का सीजन होता है इसमें सर्फेक्टेंट जरूर इस्तेमाल करें। जैसे अभी तेवतिया जी कह रहे थे कि भाई बरसात का समय होता है, आपने प्रश्न
1: मैंने भी
0: पूछा
1: कहा
0: था,
1: था जी
0: तेवतिया जी ने सुझाव दिया था उसमें कि 4-5 घंटे का समय मिलना चाहिए।
1: जी जी
0: तो यदि हम सर्फेक्टेंट मिला देते हैं, स्टीकर उसमें किसान की भाषा में बात करूँ तो मिला देते हैं, तो वो जो हमारा लीफ है उसको जल्दी से एब्जॉर्व कर लेती है, वो ड्रोपलेट नहीं बनने देती, वो पौधे की पत्ती में जल्दी से उसके अंदर चली
1: और
0: जाती
1: देर
0: है
1: तक रहती है
0: और
1: दवा,
0: देर
1: फिर
0: तक, क्योंकि शरीर
1: चिपक
0: में
1: जाती
0: अच्छे
1: है।
0: से
1: हाँ
0: प्रवेश कर जाएगी तो इसलिए वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगी।
1: जी
0: तो निश्चित तौर पर हम उसको आसानी से उसे कंट्रोल कर लेंगे और हमारे किसान भाइयों को उसका नुकसान भी, इन कीटों का उतना नुकसान नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, जांच और पहचान
1: जी
0: दोनों मस्त है। यदि
1: समय से
0: हम
1: कर ली, समय से इलाज कर दिया तो
0: जी
1: नुकसान से
0: कारगर,
1: बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, अब कीट की बात हो रही है तो रोग की बात भी बता दो, कोई रोग
0: जी
1: इस समय आ रहा हो तो।
0: हाँ, इसी के पैरेलल अभी हमारे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोग चला हुआ है जिसको हम पोका बोइंग के नाम से जानते हैं। और ये पोका बोइंग जो डिजीज है, ये बेसिकली 3 टाइप की स्टेज इसकी आती है। टॉप रोट फेज, क्लोरोटिक फेज आती है, और टॉप रोट फेज आती है, नाइफ कट फेज आती है, जो प्रारंभिक अवस्था है, किसान आसानी से पहचान सकता है
1: जी
0: उसको, कि जहां पर आपका गोला शुरू होता है वहां पर पत्ती एक तो श्रिंक करेगी, सुकड़ेगी,
1: सुखड़ जाएगी,
0: और
1: पीला
0: वहीं पर येलो कलर का स्पॉट बनाएगी, सफेद और पीले रंग का धब्बा सा बनाएगी, और वो बाद में फिर वहां पर ब्राउनिश कलर, रेडिश कलर में परिवर्तित होना शुरू होगी। तो इस प्रकार के स्पॉट वहां पे पोका बोइंग में नजर आने शुरू होते हैं। और उसके लिए किसान भाइयों से आग्रह है कि वो उसके लिए बहुत अच्छा केमिकल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, COC, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। लेकिन सावधानी ये बरतें, उसके साथ अन्य केमिकल का इस्तेमाल न करें तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा।
1: डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, डॉक्टर US तेवतिया जी कार्यक्रम में आए, किसानों की समस्याओं का समाधान किया, धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद
1: आपका
0: जी,
1: भी बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट।
1: इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक है शिव नंदन लाल। तो सभी भाइयों बहनों हमारा
1: राम राम, राम।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, गजलों के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आगाज करते हैं हम चंदन दास साहब की आवाज़ में इस गजल के साथ।

जी हाँ जी, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए जिस तरह कार्यक्रम का हमने किया है आगाज, उसी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे चंदन दास साहब की आवाज़ में ये गज़ल आपके लिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया।

0: जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया और दक्षिणी दिल्ली के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: श्री रिजिजू ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि देश के युवाओं को एक निष्पक्ष पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली मिलनी चाहिए। श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि पेपर लीक को रोकना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और देश के हर परिवार से जुड़े इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उधर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों का गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्कालीन स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि श्री वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही पात्र लोगों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग द्वारा आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का कार्य किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के अंतर्गत अब दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित कर रही है जिससे भविष्य में रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्ड पर संपत्ति का संपत्ति पहचान संख्या, जारी करने की तिथि, गाँव, उपमंडल, जिला, कब्जाधारी का नाम जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्ड पर QR कोड भी होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से पूरे गाँव का हवाई सर्वे भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 48 गांव को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ हुए समझौते के तहत योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 30 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उनके अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अब तक 12,000 से अधिक संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिले में सर्वे की गई सभी संपत्तियां विवाद मुक्त हैं, जबकि अन्य जिलों में भी विवाद के समाधान के साथ आगे की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार तकनीक आधारित

0: गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल, बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सेंट स्टीफंस अस्पताल शामिल हैं। इस पहल से उन फॉरेन मेडिकल स्नातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार युवा चिकित्सा पेशेवरों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रादेशिक के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये देश में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसका इस्तेमाल 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए किया जा सकता है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश की पहली डेंगू वैक्सीन की मंजूरी मिलना डेंगू के खिलाफ भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने आज कैंसर और संक्रामक रोगों के उपचार संबंधी समाधान विकसित करने के लिए 3 स्वदेशी जैव चिकित्सा तकनीकों को अग्रणी भारतीय दवा और वैक्सीन निर्माताओं को लाइसेंस दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि तकनीक अगली पीढ़ी के स्वदेशी उपचारों, टीकों और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर ICMR के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा कि संस्थान ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सार्वजनिक धन से होने वाला अनुसंधान ऐसे उत्पादों में परिवर्तित हो जो स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार करे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज सराय कालिखा नमो भारत स्टेशन पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य नेत्र स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द पता लगाना और नमो भारत यात्रियों के साथ साथ अन्य लोगों को निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा प्रदान करना था। इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की दृष्टि जांच की और उन्हें इसका विशेष ख्याल रखने संबंधी सलाह दी। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना इस महीने की 16 तारीख को जारी की थी। पदभार संभालने के बाद श्री ग्रेवाल ने मीडिया से कहा कि आयोग सभी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए काम करेगा और स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग वास्तविक शिकायतों के समाधान और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर उचित ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ग्रेवाल ने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणाओं को भी खारिज किया।
2: कुछ लोग देश में बहुत गलत फहमी डाल रहे हैं कि यहाँ मिनोरिटीज के ऊपर जुलम हो रहा है। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है सभी कम्युनिटीज की। अगर जुलम होता हो या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती या डिस्क्रिमिनेशन होती हो तो यहाँ पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अपने अपने फील्ड में सभी हम मिलकर कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी भी तो उसको भी एड्रेस करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद दिल्ली नगर निगम के जोनों के नाम अब दिल्ली के राजस्व जिलों के नामों जैसे कर दिए गए हैं। संशोधित 14वीं अनुसूची में दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के नाम और उनके 12 जोनों की पूरी जानकारी दी गई है। 12 जोन के लिए हम बाहरी उत्तर, उत्तर, उत्तर पश्चिम, मध्य उत्तर, पुरानी दिल्ली, मध्य पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि कैलाश नगर के महावीर स्वामी पार्क में पानी की मुख्य पाइपलाइन पर कुछ बड़े सुधार कार्य के कारण सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साउथ दिल्ली मेन लाइन में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया कि कल सुबह 10 बजे से अगले शाम 6 बजे तक दक्षिण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।

0: बोर्ड ने जानकारी दी है कि राजघाट के पास समता स्थल पर स्थित वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली मौजूदा पाइपलाइन की मरम्मत के कारण कल माटिया महल, बल्लीमारान और चांदनी चौक एसी 20, 21 और 22 के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि जलापूर्ति कल सुबह 11 बजे से 18 घंटे तक बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। राजधानी के दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड स्थित बीके दत्त कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत में सुबह आग लग गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी और इस हादसे में एक महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि सुबह करीब 10:20 पर सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए 3 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें स्थलीय साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और आजीवन उपलब्धि पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार का उद्देश्य युवा भारतीयों को साहसिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। नामांकन आज से 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। आवेदक संबंधित राज्य सरकार के खेल विभाग या मान्यता प्राप्त साहसिक संस्थानों से अनुशंसा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवारत कर्मियों के लिए अनुशंसा अनिवार्य है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक दिन के विराम के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। हाजिर हूं मैं लेकर आपका अपना फिल्म संगीत का प्रोग्राम गीत मालिका। और आज की गीत मालिका की इस रोलर कोस्टर राइड में मैं हूं आपकी कैप्टन, आपकी साथी, आपकी मित्वा, आपकी अपनी दीप्ति। तो क्या खास है आज इस रोलर कोस्टर राइड में आपके लिए, करेंगे इस बारे में बात। लेकिन करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत इस खुशनुमा गीत के साथ।

ये खूबसूरत शाम और आज 21 जुलाई हिंदी सिनेमा के उस महान गीतकार का जन्मदिन जिन्होंने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं, उन्हें धड़कनों में बसाया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब की, जिनके गीत आज भी हर दौर, हर उम्र और हर दिल की जुबान बने हुए हैं। आज का ये पूरा सफर हम समर्पित करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस जादूगर को जिन्होंने शब्द नहीं जज्बात लिखे। उन्होंने 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक हजारों गीत लिखे और कमाल की बात ये रही कि उनके शब्द हमेशा सीधे दिल तक पहुंचे। उनकी कलम की सबसे बड़ी खूबी थी सादगी। मुश्किल एहसासों को भी इतने आसान से अल्फाजों में पिरो देते थे कि हर शख्स को लगता था, अरे ये तो मेरे दिल की बात कह दी। तो आइए आज उनके लिखे उन सदाबहार नगमों के साथ याद करते हैं उस महान गीतकार को, जिनके गीत वक्त के साथ पुराने नहीं बल्कि और भी अपने और भी दिल के करीब लगने लगते हैं।

पहली मुलाकात जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत लम्हा। उस एक मुलाकात में ना जाने कितने सवाल होते हैं, कितनी धड़कनें होती हैं और कितनी अनकही बातें होती हैं। श्रोताओं, आनंद बख्शी साहब की यही तो खासियत थी कि वो उन एहसासों को भी शब्द दे देते थे जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ महसूस कर पाते हैं। पहले नजरें मिलती हैं, फिर मुस्कुराहट अपना काम करती है और उसके बाद दिल बिना किसी इजाजत के अपनी अलग ही कहानी लिखना शुरू कर देता है। और फिर एक ऐसा मकाम भी आता है जहां अल्फाज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब सच्चे एहसास हों तो खामोशी भी बातें करने लगती है। आइए आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी साहब का लिखा एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जिसमें दो दिल मिल तो रहे हैं लेकिन अपनी कहानी दुनिया से छुपाकर।

श्रोताओं, दो दिल जब एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, तो मुलाकातें हमेशा जरूरी नहीं रह जाती हैं, क्योंकि उसके बाद यादें जो होती हैं वही सबसे ज्यादा खूबसूरत साथी बन जाती हैं। और यही आनंद बख्शी साहब की लेखनी का जादू था। उन्होंने मोहब्बत को सिर्फ मिलने की तड़प तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इंतजार, याद, तड़प, मुस्कुराहट, हर एहसास को बेहद सादगी से गीतों में पिरो दिया। उनके लिखे हुए गीत इसलिए भी खास लगते हैं क्योंकि उनमें जिंदगी बनावटी नहीं बल्कि बिल्कुल सच्ची नजर आती है। उनके गीतों में हर श्रोता को कहीं ना कहीं अपना ही किस्सा सुनाई देता है। और जब कोई दिल के इतना करीब आ जाए कि उसका नाम होठों पर आए ना आए, दिल उसे हर धड़कन में याद करता है, तो इसी खूबसूरत एहसास को शब्द देता है आनंद बख्शी साहब का ये अगला सदाबहार नगमा।

अरे हाँ, तो नाम याद रखना भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन जब मोहब्बत हो जाए ना, तो ये सारा हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। देखिए ना, अभी तक तो बात थी कि तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, लेकिन अब ये कहानी थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है आगे, और अब हालात ये हैं कि अपना नाम याद रहे या ना रहे, उनका ख्याल हमेशा साथ रहता है। दोस्तों, आनंद बख्शी साहब प्यार की ऐसी ही शरारतों को बड़े मजेदार अंदाज में गीतों में पिरो देते थे। उनके शब्द मुस्कुराने पर मजबूर भी करते थे और गुनगुनाने पर भी मजबूर कर देते थे। तो चलिए जरा सा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, उसका मुझे लगता है कि गुनगुनाना शायद प्यार की किसी मेमोरी को छोटा सा सिस्टम अपडेट दे ही देगा। चलिए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, ट्यून इन किया है आपने, हम आपको बताते चले आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को। प्रोग्राम चल रहा है गीत मालिका। बात कर रहे हैं आज हम लोग आनंद बख्शी साहब के लिखे सदाबहार नगमों की, और आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दीप्ति। और अब जो गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, ये निकला है आनंद बख्शी साहब की कलम से, और गीत ऐसा है कि इस गीत के बगैर ये कार्यक्रम तो पूरा हो ही नहीं सकता था।

दोस्तों, आनंद बख्शी साहब की कलम सिर्फ प्यार और मोहब्बत की दास्तानें ही नहीं लिखती थी, उन्होंने दोस्ती को भी यादगार बनाया, रिश्तों को भी आवाज दी, और जब जब मस्ती का मौका आया तो ऐसे चुलबुले गीत लिखे कि आज भी सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हमने अभी आपको सुनवाया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, एक ऐसा गीत जिसने दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए एक नई पहचान दे दी। लेकिन जिंदगी सिर्फ वादों और जज्बातों से तो नहीं चलती ना, इसमें चाहिए थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा कंफ्यूजन और कभी कभी छोटी मोटी गड़बड़ी भी। और सच कहिए, अगर जिंदगी में कभी कुछ गड़बड़ हो ही ना तो जिंदगी तो बड़ी स्मूथ सी चलेगी ना, मजा ही कहाँ आएगा। तो चलिए, मोहब्बत के बाद दोस्ती और दोस्ती से निकलकर चलते हैं मस्ती की उसी दुनिया में जहाँ चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है और पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। सुनिए आनंद बख्शी साहब की कलम।

अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बज गई।

0: जान बचाओ
1: लो पी जाओ।
0: इसमें क्या है
1: तुम्हें पता है,
0: पी के मरूं क्या और करूं क्या।

हर मुलाकात की एक खूबसूरत बात होती है कि वो अगली मुलाकात की उम्मीद भी साथ छोड़ जाती है। आज आनंद बख्शी साहब के गीतों के साथ हमने प्यार के रंग देखे, दोस्ती की गर्माहट महसूस की, शरारतों पर मुस्कुराए और यादों के कुछ बेहद खूबसूरत पल अपने साथ समेट लिए। यही तो था उनकी कलम का जादू। हर गीत जिंदगी का नया एहसास बन जाता था। अब स्टूडियो की घड़ी हमें बता रही है कि विदा लेने का वक्त हो गया है। रोलर कोस्टर राइड को हमें यहीं एंड करना होगा, लेकिन ये विदाई अलविदा नहीं है, ये एक छोटे से विराम की तरह है। तो चलते चलते आनंद बख्शी साहब के ही लिखे इस प्यारे से गीत के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी।

और इसी गीत के साथ आज की इस रोलर कोस्टर राइड को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी दीप्ति पाठक को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी यूं ही किसी संगीतमय सुरीले मोड़ पर। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया।

0: अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि

0: विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के

0: अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him.

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है। आबनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलात पर बहस की अपनी पहले की मांग से इन्हराफ करने का इल्जाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अराकीन के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी

0: सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतल्ला किया कि हुकूमत ने मामले पर बहस की मांग कबूल कर ली है। तहम मरकजी वजीर ने कहा कि जब हुकूमत के मौकफ से कांग्रेस लीडर को आगाह किया गया है तो जनाब गांधी अपनी पहले की मांग से पीछे हट गए और वो मजीद मुतालबात करने लगे। इस दौरान पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से बार बार रखनांदाजी के पेश नज़र दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून इजलास के दूसरे दिन बार बार शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी। अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नज़र दोनों ऐवानों की कार्रवाई तीन मरतबा मुलतवी की गई। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामलों पर नारेबाजी कर रही थीं। रखनांदाजी के सबब दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर नहीं हो सका। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरों ने एहतजाज कर रहे अरकान से बार बार ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज़ करने का अहद किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। जनाब मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से भी जाना जाता है, खिताब करते हुए ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने मुल्क भर में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक की रोकथाम के सिलसिले में सभी मुतालका फरीकों से मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कल कौमी राजधानी में नीट UG 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान जख्मी हुए लोगों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी गए और वहां दाखिल जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। खुराक को डिब्बा बंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज कहा है कि हुकूमत तालीम के शोबे में इस्लाहात की खातिर अहद बस्ता है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से बात करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सभी शोबों में इस्लाहात की जरूरत पर मुसलसल जोर देते रहे हैं, जिसमें तालीम का शोबा भी शामिल है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी वजारतों में इस्लाहात की जा रही हैं। जनाब पासवान ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो अपनी तामीरी तजावीज पेश करे और बामानी बातचीत में शामिल हो।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत के दौरान ये हुक्म दिया। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और शुमाली मकदूनिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़िराद, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़ियाफ़त और फिल्म साजी जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसअत देने समेत तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने पर राजी हो गए हैं। सदर जमहूरिया आज स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी हम मनसब गोरदाना डॉवकोवा से बातचीत के बाद मीडिया से खिताब कर रही थीं।
4: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुश्तरका जमहूरी इकदार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक की है। सदर जमहूरिया ने कुदरती आफात से निमटने के बुनियादी ढांचे, आलमी हयाती ईंधन इत्तेहाद और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसी भारत की क्यादत वाली आलमी पहल में शामिल होने के शुमाली मकदूनिया के इरादे का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया ने शुमाली मकदूनिया के अजीम तरीन हीरो गॉडसे डेलचेव को भी खराज अकीदत पेश किया। शुमाली मकदूनिया का दौरा खत्म करने के बाद सदर जमहूरिया रोमानिया का सफर करेंगी। मध्य प्रदेश असेंबली ने आज अपने मानसून इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया। कांग्रेस सरकार ने बिल को मुंतखबा कमेटी को भेजे जाने की मांग की, लेकिन रियासती सरकार ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के अराकीन असेंबली ने ऐवान के वस्त में एहतजाज किया, जिसके बाद कार्रवाई दो मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कार्रवाई में रुकावट के बावजूद बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। अब बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
5: यकसा सिविल कोड यूसीसी के अहम इल्तजाम के तहत मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी। मर्द और खवातीन को मसावी मौरूसी हकूक हासिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं गांव की सतह पर भी शादियों का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। कबायली बिरादरियों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने ऐलान किया है कि नामची जिले में समरदुंग में NHPC हादसे के सिलसिले में एक आला सतही तहकीकती कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के साथ आज हादसे के मकाम का दौरा करने के बाद वजीर आला ने सभी फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह हादसा चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से नहीं बल्कि मीथेन गैस के धमाके की वजह से हुआ हो। अब तक जाए हादसे से 12 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और ऐसा समझा जाता है कि दीगर अफराद अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नामची जिले के समरदुंग में NHPC तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के तहत जेरे तामीर सुरंग में फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी और DGP ने तलाश कार्रवाई के सिलसिले में सीनियर अहदेदारों के साथ नामची में एक जायजा मीटिंग की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के वजीर आला से बात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जनाब प्रेम सिंह तमांग ने सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के लिए वजीर आजम की सताइश की है। दोनों रहनुमाओं ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
6: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज टनल का मुआयना किया और सूरतेहाल का जायजा लिया। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मुनासिब जांच इस अफसोसनाक वाकये के सभी हकायक को वाजह करेगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम हुकूमत मरने वालों के कुंभों को फौरी मदद फराहम करेगी। सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने भी नामची में मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा मीटिंग की ताकि बचाव मिशन को तेज किया जा सके। इस दौरान NDRF की एक और टीम नए आलात के साथ आज टनल में दाखिल हो गई। गैंगटॉक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: ईरान और अमरीका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिससे स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुज पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने पाकिस्तान में सालिसकारों के साथ आज मुलाकातें की, जहां सिफारतकार अमरीका और ईरान के दरमियान टूट चुके आर्जी समझौते को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान के शहर हुरमुज को निशाना बनाया, जबकि उर्दून, कुवैत और बहरीन से ताजा ईरानी हमलों की खबर मिली है। ये हमले अमरीका ईरान तनाजे पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदेही करते हैं। भारत ने आज रूसी सिफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमिर लादानोव को तलब किया। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज MV गोल्डन लिव पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें जाये हो गई थीं। وزارت داخلہ نے حملے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور کہا کہ اس طرح کے حملوں سے بین

अक्वामी बहरी तिजारत की हिफाजत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के परुन शहर में तबाहकुन सैलाब में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हो गए और दीगर 80 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। तालिबान हुकाम की जानिब से एक बयान के मुताबिक परुन और उसके आसपास के इलाकों में सैलाब के पानी में बहने से 100 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी ने कहा कि नुकसान का जायज़ा लेने, लापता अफराद को तलाश करने और बचाव इकदामात में मदद की खातिर खसूसी बचाव टीमें तैनात की गई हैं। हुकाम ने ये खबरदार किया कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात खित्ते, मशरकी राजस्थान और वस्ती महाराष्ट्र में अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और मगरबी राजस्थान में भी अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी ने मर्दों के 20 मेंबरों का ऐलान किया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की सरबराही करेंगे। दरमियानी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने अपने नए तजुर्बे की बुनियाद पर खेल में दिलचस्प मुजाहिरा करेंगे। भारत इंग्लैंड के साथ पूल डी में रहेगा। पाकिस्तान और वेल्स अपने सभी पूल स्टेज के मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आलमी स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में भारतीय खातून खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन के खिलाफ 11-2, 11-1, 11-3 से जीत हासिल करके अगले राउंड में दाखिला हासिल कर लिया है। मर्दों के जुमरे में आर्यवीर दीवान, यूशा नफीस और गुरवीर सिंह ने पहला राउंड जीत लिया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया है। आमना हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनो।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं,

महंगे भांडे, अरे पता चलेगा किसके किससे मिले हुए थे डांडे। कौन सा ठेका लेकर किसने कितना माल बनाया।

0: में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुप्पुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी

अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। इस कार्यक्रम में सुनते हैं सुनहरे दौर के वो सुनहरे गीत जब जिंदगी में ना इतनी भाग दौड़ थी और ना ही सब अपने में इतने व्यस्त थे कि किसी के सुख दुख में शामिल भी ना हो सके। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं इस बेहद प्यारे से नगमे के साथ।

दोस्तों, यूं तो कुदरत ने हम इंसानों को हजारों हजारों हजार ऐसे तोहफे दिए हैं जिनके लिए हम उनका चाहे जितनी बार शुक्रिया अदा करें वो कम ही है। उन्हीं तोहफों में से एक प्यारा सा तोहफा है याद। मोबाइल चार्ज ना हो, नेटवर्क ना हो, लेकिन फिर भी हम किसी इंसान से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, तो बस अपनी आंखें बंद करनी है और तस्वीर में बिताए उन लम्हों में आप दोबारा जी सकते हैं, जा सकते हैं बिना किसी नेट के, बिना किसी रिचार्ज के। है ना ये कुदरत की बेमिसाल ताकत।

جولیت، لیلا مجنون، شری اور فرحات، ان کا سچا عشق زمانے کو اب

रखना। यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

मोहब्बत दोनों तरफ बराबर हो, तभी वो उसे अपने मकाम तक पहुंचाने के काबिल हो पाते हैं। अगर मोहब्बत की तासीर किसी भी तरफ ज़र्रा बराबर कम हुई, तो ऐसी मोहब्बत को मंजिल हासिल ही नहीं हो सकती। ऐसे में किसी एक का दिल टूटना लाजमी है।

जिंदगी जैसी खूबसूरत शय इस पूरी दुनिया में दूसरी है ही नहीं, और अगर वो जिंदगी इंसान की हो तो फिर बात में और खूबसूरती आ ही जाती है। एक छोटे से बच्चे का बड़ा होना, पढ़ाई, रोज़गार, शादी और ज़िंदगी की तमाम उलझनों से लड़ते हुए, कभी हंसते हुए कभी रोते हुए, ज़िंदगी को यूं सिलसिलेवार तरीक़े से जीते चले जाना और इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तारीफ़ है कभी कभी भी हार ना मानना और अपने से जुड़े हर शख्स के दिल में अपनी कुछ ऐसी यादें छोड़ते जाना जो उनके दिल में हमेशा हमेशा आपको जिंदा रखे।

दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है ना, ये हमें बताती है कि हमें चलते ही चले जाना है। और अगर ज़िंदगी की राह में जो लोग मिले, उनसे मुस्कुरा के उनका दिल अपने साथ दिल से मिलाकर चलते चले जाना है। और दोस्तों, वक्त चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, लोग चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, लेकिन हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें हम बदल ही नहीं सकते। जैसे पहली मोहब्बत का वो एहसास, जिसे कोई इंसान चाह कर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो ज़िंदगी का पहला ऐसा अनोखा तजुर्बा होता है जो बस यूं ही अचानक हो जाता है, कभी कभी इत्तेफाक से।

और दोस्तों, किसी की यादों में बने रहने के लिए बस थोड़ी सी कोशिश ये करनी पड़ती है कि आप हमेशा अपनी वो बात कहें जो आपके दिल से निकलती है। और दोस्तों, इस दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम ना तो हर किसी से मिल सकते हैं, ना ही हर किसी को जान सकते हैं, लेकिन कुदरत भी हमारा रابطہ सिर्फ उन्हीं लोगों से करवाती है जिनसे मिलना या जिनसे बिछड़ना, और बिछड़ने से ही तय होता है, और ये बिछड़ना पहले से ही तय होता है।

दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी ज़िंदगी में गाने नहीं होते तो ज़िंदगी कैसी फीकी सी होती है ना? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, शादी हो, ब्याह हो, सालगिरह हो, तो और कोई दिल मिल गया हो या दिल टूट गया हो, फिल्मी गाने किसी राह में हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं, हर रूप में, बचपन से लेकर ज़िंदगी की हर सांस तक, आखिरी सांस तक।

दोस्तों, किसी भी रिश्ते को अगर आप बचा के रखना चाहते हैं तो उसके लिए जानते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन, यानी वार्तालाप। आपकी बातें आपके साथी को और आपके साथी की बातें आपको पता होंगी तो ना तो कभी गलत फहमियाँ होंगी और ना ही आपके रिश्ते कभी उनसे ख़राब होंगे।

दोस्तों वक्त ये कह रहा है कि गीत सुनहरे से अब हमें जाना होगा, क्योंकि आगे के सफ़र पर जो चलना है, उम्मीद है आपका ये वक्त बेहद खूबसूरत रहा होगा गीत सुनहरे के साथ। कल हम फिर आएंगे कुछ और नगमात के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल के साथ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ की बुआई की प्रगति, मानसून की स्थिति, उर्वरक और बीज की उपलब्धता तथा अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले जिलों की निगरानी करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीके एनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुपुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। आपसे कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और अब वक्त है कार्यक्रम गीत बहार का, जिसमें आप सुनते हैं गाने एक के बाद एक लगातार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वक्त में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की बहार। अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने

0: अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 3:10 और 20 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत गजल। तो आज सबसे पहले एक बेहतरीन लाजवाब गीत गजल सुनवाना चाहेंगे। आज मैं हूँ आपके साथ इस कार्यक्रम में

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। साथियों, एक और बेहतरीन गजल आ रही है हवा के झोंकों में। बहुत ही शानदार बेहतरीन एल्बम है रेड रिबन्स द्वारा, हवा के झोंकों में, गजल उस्ताद सुजात हुसैन खान। जी हाँ, उस्ताद सुजात हुसैन खान साहब लिरिसिस्ट हैं, कमलेश सोनावाला, और संगीत से सजाया है उस्ताद सुजात हुसैन खान साहब ने। तो आइए एक और बेहतरीन खूबसूरत गजल

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है, माफ कीजिएगा, ये आकाशवाणी का AIRIM 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत गजल। तो साथियों, एक और बेहतरीन रचना आ रही है आपके पास, तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गज़ल। इसी के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार खूबसूरत गज़ल और आ रही है, तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन खूबसूरत गज़ल। गज़ल यानी कि किसको कातिल मैं कहूँ, एक बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गज़ल है। और किसको कातिल मैं कहूँ, सजदा एक एल्बम है, बहुत ही सुंदर जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में शानदार बेहतरीन गज़ल है। और गीत अहमद नदीम कासमी के हैं और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गज़ल को जगजीत सिंह जी ने। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन लाजवाब गज़ल।

जी हाँ श्रोताओ, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में। एक और खूबसूरत गजल आ रही है, तो कुछ तो दुनिया की इनायत

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गज़ल। जी हाँ, गीत गज़ल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।

ऋषि व पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म।
0: प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई 2026 सुबह के 4:53 और 5 सेकंड हुए हैं। इन मीटरों पर हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं 5 बजने को हैं और अब कुछ आने वाले प्रोग्राम के बारे में कुछ रूपरेखाएं बता रहे हैं, विवरण दे रहे हैं और 5 बजने को हैं। पांच बजे कार्यक्रम होगा, माफ कीजिएगा, अभी 5 बजने को हैं और 5 बजने से पहले कुछ जानकारियां। सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आप सुनेंगे योग, उज्जयी, प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 में देशभक्ति गीत फिल्मों से। 5:30 कार्यक्रम होगा स्वर रंजनी। सुबह के 6 बजे होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, माफ कीजिएगा, हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। का समय रहेगा वंदना कार्यक्रम का। 6:40 पर होगा कार्यक्रम चिंतन। 6:45 पर कार्यक्रम रामचरितमानस बालकांड 124। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं सुबह के 5 बजने को हैं, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के व्यवसायियों, निवेश एजेंसियों और उद्योग जगत से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम और स्थानीय मूल्य संवर्धन के माध्यम से साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोब्जे में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगे। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जाजोन्स्का दावाकोवा भी उनके साथ होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोब्जे संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगी। वे विश्व विरासत स्थल होरिड लेक भी जाएंगे। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शन

0: पारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे तिरुपुर के ओजाशी में लिंगवेश्वर शिव मंदिर का भी दर्शन करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 18 मई को कैबिनेट के फैसले के बाद गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। कोलकाता के विद्युत भवन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सिफारिशों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन उसने परमाणु गतिविधियां दोबारा अगर शुरू करी या फिर होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया तो अमरीका इसका कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussions in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to the media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
1: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में

देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।